हाँ जी गाइस, मैं वापस आ चुकी हूँ। 7 तो बज चुके हैं और आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, क्योंकि थोड़ी लाइफ में स्ट्रेस चल रही है। लेकिन लाइफ में स्ट्रेस तो मतलब आती जाती रहती है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय Page 3 ईटरी, फ्रॉम सिजलिंग कबाब्स एंड फ्लेवरफुल चाट टू फ्यूजन बाइट्स एंड रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स। अगर आप Page 3 ईटरी एट हब 121 पे नहीं गए हैं, देन यू गाइज आर मिसिंग आउट, क्योंकि यहाँ पे बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर। ब्रंच, लंच, डिनर, डेट नाइट, फूडी मीटअप, वट एवर यू नीड, दे हैव इट। Page 3 ईटरी ब्रिंग्स द परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स। विजिट Page 3 ईटरी एट हब 121 और एक्सप्लोर मोर एट Page 3 ईटरी.com। वेल, इट इज डिनर टाइम आफ्टर ऑल। मैं भी अभी स्टूडियो में आने से पहले अपना डिनर खा के ही आई हूँ, बिल्कुल बाहर बैठ के। आई वॉज ईटिंग माई चिकन एंड राइस एंड ब्रोकली लाइक अ बोरिंग बॉडी बिल्डर, जो कि मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं समहाउ बॉडी बिल्डर के डाइट पर जरूर हूँ। चाहे मैं बॉडी बिल्डर हूँ ना हूँ, लेकिन मैं डाइट पर जरूर हूँ। माई आइडिया इज टू लूज बॉडी फैट एंड गेन सम मसल एंड टोन डाउन, बट आई डोंट नीड टू टेल यू ऑल ऑफ दैट, एंड इट्स ओके। समटाइम्स आई जस्ट से थिंग्स

चाहे मैं बॉडी बिल्डर हूं ना हूं, लेकिन मैं डाइट पर जरूर. माय माय आइडिया इज टू लूज बॉडी फैट एंड गेन सम मसल एंड टोन डाउन, बट आई डोंट नीड टू टेल यू ऑल ऑफ दैट. एंड इट्स ओके, समटाइम्स आई जस्ट से थिंग्स विदाउट थिंकिंग इट थ्रू, एंड दैट इज ओके. यू नो व्हाट इज माय लर्निंग इन ऑल दिस? मेरा लर्निंग इन ऑल दिस इज टू होल्ड एंड सिट विद द रियलिटी एंड द ट्रूथ फॉर अ लिटिल बिट बिफोर आग बबूला होके किसी के ऊपर भड़क जाने से पहले थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर सोचो, उसके बाद आगे करो. लेकिन आगे करो, लेकिन पहले सोचो थोड़ा सा. ठीक है भाई, आज मैंने आने से पहले मैंने गैस भराई, मुझे बड़ी खुशी हुई. ऑल गैस प्राइसेस आर अंडर $3 एट द मोमेंट. इफ यू आर स्टिल फीलिंग गैस ओवर $3, देन यू प्रॉबली नीड टू चेक सम गैस पम्प्स अराउंड योर एरिया. भाई अभी भरा लो, अगले हफ्ते 4th of July गैस प्राइसेस फिर बढ़ जाएगी. जैसे छुट्टी का मौका होता है गैस प्राइसेस वैसे ही बढ़ जाती है समर में, फिर जो 4th of July के बाद कम हो जाएगी, देखना. ये मेरी प्रडिक्शन है, वैसे ये गलत भी हो सकती है, पर मेरा मेरा मानना या फिर मेरी रिसर्च का मानना तो ये है. अगर गलत हो गई तो कोई बात नहीं, गलत हो गई, बिग बिग डील, यू नो, और क्या हो सकता है. दूसरी चीज़ जो है, बाय द वे, मैं ना ढूंढ रही थी कि यार इस वीकेंड में करूँ क्या. मेरे पास एक पार्टी है दैट आई नीड टू गो ऑन फ्राइडे, आई कैन डू दैट. मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मूवी के लिए इनवाइट किया संडे शाम को, लेकिन अपेरेंटली संडे शाम थोड़ा देर हो जाती है, तो मे बी वी विल स्किप दैट मूवी. लेकिन देन आई वॉज लुकिंग लाइक वॉट डू आई डू दिस वीकेंड, क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड में मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, ओनली एट फनीजिया एंड सम अदर प्लेसेस. तो मैं सोचा क्या करे क्या करे क्या करे, तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा अरे यार लेट्स ट्राई सम न्यू रेस्टोरेंट्स. और न्यू रेस्टोरेंट्स ट्राई करने की सोचते सोचते मैंने देखा डी मैगजीन हैज़ जस्ट कम आउट विद डैलस बेस्ट रेस्टोरेंट्स. ओके, देव कम आउट विद लाइक 10 और 15 रेस्टोरेंट्स ऑल ओवर डैलस विच आर सपोज टू बी डैलस बेस्ट रेस्टोरेंट्स ओवर हियर. तो ओवर द नेक्स्ट 1 hour और समथिंग आई एम जस्ट गोइंग टू नेम यू सम ऑफ दोज रेस्टोरेंट्स एंड सी इफ यू मेक अ लिस्ट और इफ यू वॉन्ट चेक इट ऑफ योर लिस्ट. आई एम जस्ट गोइंग टू नेम देम, वी आर नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, जस्ट सो यू नो. वी आर जस्ट, आई एम क्यूरियस टू ट्राई इट एंड आई वंडर इफ यू आर टू. सो दैट बींग सेड, आई ऑल्सो हैव सेट अनदर लिस्ट फॉर माई सेल्फ एंड आई नीड यू गाइज हेल्प उसके लिए. लेकिन वहाँ पर जाने से पहले एक गाना सुनते हैं और उस गाने के बाद हम आके ये सब बातें करेंगे. ओके, चलो गाना इंजॉय.

व्हाट इज अप, क्या बोल रहे सब लोग, एमवे बनता है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे, लेट्स डू इट।

0: playing the best tunes.
1: All right, friends, we are back. Well, I had the most amazing call with Malik Ji, who is one of our regular listeners. Thank you, Malik Ji, for listening to our show. Every single day, आप चाहे किसी भी शहर में हैं, आप हमारा शो ज़रूर सुनते हैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि आप इधर उधर से सुनते हैं मुझे. यू नो, हमारा रीच इतने दूरों दूरों तक है. बट एनी वेज गाइज, द बेस्ट, वी वर टॉकिंग अबाउट वॉट सम ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन डैलस आर. लेकिन उसके पहले, जाने से पहले, आई वॉन्ट से इफ यू आर लुकिंग टू एड अ लिटिल स्पार्कल टू योर स्पेशल मोमेंट्स, देन यू नीड टू गो टू मलाबार गोल्डन डायमंड्स इन फ्रिस्को, योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन. From beautiful rings, earrings, necklaces, and contemporary diamond style, find the perfect piece for engagements, anniversary celebrations, or simply treating yourself. Experienced, unmatched craftsmanship, brilliance at Malabar Golden Diamonds in Frisco. And don't forget, agar aap app download karte hain, then you can see their latest collection updates and more. So make sure you go over there. So aage bade. Well, Malik ji, thank you for calling us. I love hearing your voice. Well, this is a shout out to another one of our regular listeners, Zimran. भाई, मुझे कोई मतलब मुझे अपने रिसर्च से गाने पता चले ना चले, लेकिन जिमरान को ज़रूर पता होता है विच इज़ द लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग दैट कम्स. लाइक ही नोज इट, ही इज़ ऑन पॉइंट विद हिज बॉलीवुड ट्रिविया. वन डे इफ एवर देर इज सम काइंड ऑफ अ बॉलीवुड ट्रिविया, जिमरान, यू आर गोइंग टू बी माई पार्टनर एंड वी आर गोना गो एंड प्ले दैट गेम, ओके? एंड वी विल विन अ लॉट ऑफ मनी एंड प्राइजेस. Let's hope, fingers crossed, okay? So, Zimran has just heard this song called Saadi from Dhamaal 4, which, by the way, released just 11 hours ago. So, aaj hi release hua hai aur main aapke liye baja rahi hoon, and this is Dhamaal 4.

0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
0: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
1: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
2: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
3: Shaadi Biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
5: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड
6: एक्सक्यूज मी इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल
5: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल
6: ओके देन Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
5: And what's so special at Neon Cactus?
6: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
5: Not bad.
6: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
5: Okay, this I didn't expect from you.
6: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
7: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है
8: हाँ
7: घर रिलोकेट करनी है
8: हाँ
7: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है
8: हाँ भाई हाँ
7: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है SFL Worldwide को कॉल कर
9: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग बॉक्सेस शिपिंग कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन ऑटो ट्रांसपोर्ट सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज SFL Worldwide हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335
7: यार बॉस ने फिर से डांट दिया ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस
10: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
7: थेरेपी वो तो बहुत महंगी है
10: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
7: ये क्या होता
10: है सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
12: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
13: The Magic 24/7 only on 104.9 FM.

ऑलराइट दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं. आप कैसे हैं? आपका थर्सडे कैसा जा रहा है? वेल, दिस इज माय लास्ट डे ऑफ द वीक. थैंक यू फॉर द कॉल. अभी मैं अनफॉर्चुनेटली कॉल नहीं उठा सकती. जो भी मुझे कॉल कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी बातें कर रही हूँ. एंड अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं ज़रूर आपका रिक्वेस्ट बजाऊंगी. लेकिन उसके पहले गाइज, दिस इज माय लास्ट डे दिस वीक टू प्ले सम अमेजिंग म्यूजिक. लाइफ थोड़ी स्ट्रेसफुल जा रही है, लेकिन होपफुली सब जल्दी ठीक हो जाएगा. आई एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड. कल मैं बोल नहीं रही थी इसके बारे में कि भाई मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आ रहा होगा तभी सब गड़बड़ जा रहा होगा. मैंने ना सिर्फ गेस मारा था, बट उसके बाद मैंने घर जाके देखा तो गेस वॉट, जून 29 से जुलाई 20 समथिंग, जुलाई 23rd या 27 तक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है. और उसमें समहाउ आई हैव नोटिस, मेरे साथ और बाकियों के साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चली रही होती है. या तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, या कोई ब्लेंडर टूट जाएगा घर पे, या आपके कोई काम डिले हो जाएंगे, या फिर आप किसी फालतू आर्ग्यूमेंट में फंसते रहोगे, या तो कुछ मिसकम्युनिकेशन होगा. ये रैंडम चीज़ें जो होती है ना, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है और इसका ना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. आई एम लाइक अ रियली बिग बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड प्लैनेट्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. और समहाउ मेरे साथ तो हमेशा ये रेट्रोग्रेड के टाइम पे थिंग्स हैव ऑलवेज अलाइंड. ओके, तो भाई बी केयरफुल आउट देयर. इफ यू आर गोइंग थ्रू सम स्ट्रेसफुल टाइम, जस्ट थिंक कि एक महीने की बात है, ये थोड़े टाइम बाद चले आएगा. लाइफ इज गोना गेट स्मूथ अगेन एंड देन वी कैन रिज्यूम आर डे टू डे लाइफ. तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए एंड वी विल बी बैक.

भाई आज बहुत सही दिन है क्योंकि आज अर्जुन राणा का फर्स्ट बर्थडे है। हैप्पी, तो हम एक छोटा सा हैप्पी बर्थडे गाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आई एम श्योर वो 1 साल का है तो उसे तो समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप उनके ग्रैंडफादर और उनकी पूरी फैमिली के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अर्जुन, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अर्जुन के ग्रैंडफादर ने मुझे अभी कॉल किया। राणा जी जो मेरे बहुत अच्छे रेगुलर लिसनर्स हैं, पहले बहुत गाने रिक्वेस्ट करते हैं। राणा जी थैंक यू सो मच मेरा शो अप्रिशिएट करने के लिए और मेरे गाने सुनने के लिए। तो आपके लिए ये गाना अर्जुन के लिए, अर्जुन के अब बर्थडे सॉन्ग है। वैसे बर्थडे सॉन्ग तो नहीं है, लेकिन राणा जी ने रिक्वेस्ट किया है ये गाना अर्जुन के बर्थडे के लिए, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डेडिकेट इट टू हिज ग्रैंड सन। एंड ऑल्सो राणा जी जस्ट इन्वाइटेड मी टू अर्जुन बर्थडे पार्टी विच इज गोइंग टू हैपन लेटर इन जुलाई। राणा जी थैंक यू सो मच फॉर एक्सटेंडिंग दैट इन्विटेशन। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी आने के लिए, लेकिन तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए।

भाई वो गाना मैं एक्चुअली यहाँ पे बोले जा रही हूँ और मुझे मैंने माइक भी नहीं ऑन किया, गधों की तरह मैं यहाँ पे बक बक बक बक करे जा रही हूँ। कभी आपने किया है? आप किसी से बातें करे जा रहे हो एंड देन यू रियलाइज द अदर साइड द पर्सन हैज ऑलरेडी लेफ्ट द रूम। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ ये। तो आगे बढ़े बिना एनीवेज बोले, देखा मैंने आज एक बार भी एनीवेज नहीं बोला। वाह वाह शानदार प्रदर्शन एपी, क्या बात है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि मुझे लगा कि वो जो गाना जो मैंने बजाया था राणा जी के रिक्वेस्ट पे, वो गाना मुझे लगा थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो छोटा सा ही गाना था। तो हम उसी के थीम में आगे बढ़ना तो मैं चाहती हूँ। तो तब तक के लिए मैं दूसरा गाना क्यों करती हूँ, आप ये गाना सुनिए।

गाइज 80s का थीम शुरू हो चुका था वो रिक्वेस्ट से, तो आई थिंक वी शुड, इट इज ओनली एप्ट दैट वी शैल कंटिन्यू दिस 80s का थीम है. आई विल प्ले यू वन सॉन्ग, वो बीच में हमने थोड़ा ब्रेक लिया बट आई काइंड ऑफ लाइक दिस सॉन्ग, तो ये गाना सुनते हैं. ये वाली मूवी मैंने ना पता है इतनी बार देखी है, क्योंकि जब इंडिया में थी तो एक वो फ्री मूवी चैनल नहीं आती थी जी सिनेमा, उस पर इतनी बार आती थी, मतलब हर 4 दिन में ये मूवी दिखाते थे. तो इस गाने को मेरी तरफ से आप सबके लिए.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route, rerouting.
3: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
4: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: क्यों?
4: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hurst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
5: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
4: Your new destination has arrived.
6: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth at mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
8: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
9: It's Lawson.
8: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
9: It's Lawson.
8: Daddy, what is the law?
10: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Ajji, sunte ho? Soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
16: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द राउंड, बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
17: Friends, we are back. और अभी पता है कौन सा टाइम है? अभी टाइम है टू प्ले द कॉपीकैट गेम एंड विन द गिव अवे. लेकिन गिव अवे से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट. AG Fintax. This part of the show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax firms in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and get you ready for the future. So call 469-942-9888 or visit agfintax.com. Friends, आपको पता ही है, मतलब I don't need to explain this game again, लेकिन अगर आप पहली बार ये game खेल रहे हैं, तो then let me explain to you again. Well, I will play a song from anywhere in the world, और आपको उसका Bollywood version बताना है, और इतने गाने हैं, मतलब I don't think I will ever run out of songs to play in the show, I don't know. कितना time हो गया, मेरे को एक महीने से ज़्यादा हो गया यहाँ पे काम करे हुए, अभी तक गाने खत्म नहीं हुए और मेरा ये फॉर्मेट चल ही रहा है. मैं रोज दो दो गाने बजा रही हूँ आजकल, और फन फैक्ट वो कॉपी किए हुए सॉन्ग्स खत्म नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे. तो चलो जीतते हैं. दिस गिव अवे इज ब्रॉट यू बाय फन पिज्जा किचन. अगर आपको कुछ चीज़ी चाहिए विद अ देसी ट्विस्ट. बाय द वे, फन पिज्जा किचन का बड़ा अच्छा लिबर्टी फ्रीडम ऑफर भी आया है. आपने इंस्टाग्राम पे फनेशा का रील देखा है, उसमें मैं भी हूँ, मेरे साथ मेरी टीममेट है रुमिता, हम लोगों ने बड़ा अच्छा एक रील बनाया है. एनीवेज आगे बढ़ते हैं. hey, पहला एनीवेज नॉट बैड. क्रेविंग समथिंग चीज़ी विद अ देसी ट्विस्ट. फन पिज्जा किचन वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. फॉर ऑल माय वेजी लवर्स ट्राई अचारी पनीर पिज्जा, या फिर फॉर ऑल माय नॉन वेजी लवर्स ट्राई द तंदूरी चिकन पिज्जा. बहुत टेस्टी है उनका पिज्जा, मैंने कल या परसों ही खाया था, और दे हैव रियली नाइस टिरामिसू ऑल्सो That you can check it out. तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये गेम खेल के आप जीत सकते हैं $10 का गिफ्ट कार्ड, which has to be redeemed at Fun Pizza Kitchen in Frisco. यहाँ तो चले आगे बढ़े गेम खेलते हुए. आपको पता मेरा नंबर क्या है, 972-235-5555. तो here we go. This is the song that I'm going to play for you.

0: name and then tell me if you have the answer.
1: नजरें मिली जाना है, मेरा नाम वही है जो कल मैं जीत चुकी हूँ, बट आई वॉन्ट टू कैरी इट फॉरवर्ड. मुझे आंसर आता था तो कॉल करना था.
0: नजरें मिली तो जाना है नहीं है गाना, बट आप दो दो गिव अवे नहीं जीत सकते हैं बैक टू बैक. अगर आप
1: आई नो
0: यू वॉन्ट टू फॉरवर्ड
1: इट टू
0: आंसर
1: देना था.
0: बट आंसर आपने क्लोज दिया. नजरें मिली तो करेक्ट है, उसके बाद वाला चलो जिनका कॉल आ रहा है उनको मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ. ठीक है.
1: ओके.
0: हाय, यू आर ऑन एयर. थैंक यू फॉर कॉलिंग.
2: हेलो, सो माय नेम इज राहुल एंड गाना है नजरें मिली. दिल धड़का मेरे दिल
0: करने कहा. I'm listening, I'm listening.
2: अच्छा, मैं इतना मतलब आप पॉज हो गए तो मुझे लगा am I thinking the right one or not.
0: नहीं, you are absolutely correct. In fact, आपके पहले कॉलर ने कॉल किया था and she just wanted to give the right answer because she won the giveaway yesterday. So she said कि I am giving the right answer to the next caller, whoever is calling. तो आप
2: technically,
0: कोई बात नहीं, टेक्निकली आप ट्वाइस जीत चुके हो, लेकिन गिफ्ट कार्ड आपको सिर्फ एक ही मिलेगा.
2: That's okay.
0: Congratulations, Rahul. You have won. और आप इतने अच्छे से गा रहे थे.
2: Thank you.
0: तो मैंने सोचा कि भाई आपको गाने का मौका देते. You went ahead with it and I was like, oh, that's so nice. You should sing it. And I shall be quiet.
2: Thank you. Okay. नहीं, अभी तो नहीं. अभी आप FM पे ही बजा दीजिए.
0: Okay, done. तो guys, आप गाना सुनिए. नजरें मिली, दिल धड़का ना ना.
2: धड़का मेरे दिल.
0: Who's Raja? I don't know any Raja.
2: Love you, Raja.
0: Exactly. Who's Raja? मुझे तो कोई राजा नहीं पता. रानी मुझे बहुत सारी पता है.
2: Okay, love you, Rahul.
0: There you go. Chalo, Rahul, I'll play the song and stay online, okay?
2: Yeah.

0: ओ बल्ले बल्ले राहुल जी, आप जीत चुके हैं द गिव अवे। हाँ जी भाई, मैंने ये गिव अवे का क्वेश्चन पूछा, मुझे उल्टा गिव अवे का क्वेश्चन एक और। कितना मजेदार गिव अवे था। ओके, बड़ी सारी चीजें हुई। पहली चीज तो आई हैड अ कॉलर जिन्होंने कल एक गिव अवे ऑलरेडी जीत लिया, तो मैंने कहा भाई आप तो दोबारा नहीं जीत सकते गिव अवे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आई वॉन्ट टू पास इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन हु एवर विन्स द गिव अवे। तो शी ऑलमोस्ट गॉट द सॉन्ग राइट, तो वी पास्ट इट ऑन। बट फन फैक्ट, द नेक्स्ट कॉलर वॉज राहुल जी, हु एक्चुअली हैड द करेक्ट आंसर ऑल्सो एंड हु वन द गिव अवे एनी वेज। बट वी यू विन डबल गिव अवे। नो, यू डोंट गेट टू गिफ्ट कार्ड, यू गेट ओनली वन गिफ्ट कार्ड, बट यू गेट टू विन्स। यू गेट टू हैव टू विन्स फ्रॉम पासिंग फॉरवर्ड एंड योर ओन विन टू, बिकॉज वाई नॉट, यू कैन ऑलवेज हैव टू विन्स, है ना। दो तालियां इज ऑलवेज बेटर देन वन ताली, राइट। एंड देन राहुल जी ने मुझे ये बताया दैट 8 o'clock इज देयर टाइम वेन ही सिट्स विथ हिज इन लॉज, दे आर एट होम एंड विथ हिज बेबी, एंड दे टर्न ऑन द रेडियो एट 8 o'clock एंड दे लिसन टू माई शो, एंड एवरी टाइम आई टर्न दे टर्न इट ऑन एट 8 o'clock। भाई गिव अवे का टाइम होता है, बिकॉज 8 o'clock इज माई गिव अवे टाइम, ठीक है। एंड देन दे सिट एंड लिसन टू द शो एंड लिसन टू द गिव अवे एंड आंसर द क्वेश्चन लाइक एज लाइक अ फैमिली थिंग। एंड आई थॉट दैट वॉज सो सो कूल, लाइक एज अ फैमिली यू गाइज आर सेलिब्रेटिंग इट, नॉट सेलिब्रेटिंग इट बट लाइक यू नो यू हैव अ मोमेंट, समथिंग टू डू एज अ फैमिली। आई थॉट दैट वॉज लाइक रियली ब्यूटिफुल, सो दैट मेड माई हार्ट वेरी हैप्पी। एंड बिकॉज माई फैमिली डजेंट लिव हियर, माई फैमिली लिव्स इन इंडिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई दैट यू नो somebody is celebrating with their family or just enjoying these like small moments of happiness with their folks, and it's so beautiful and so amazing. I love that. Thank you for sharing that with me. And the third thing happened, I got another call from रहमान जी, जो मुझे पहले भी कॉल करते हैं और मुझे बोलते हैं, बट इस बार उल्टा हो गया। तो रहमान जी ने पूछा, भाई तुमने ये जो गाना बजाया था, जो इंग्लिश वाला थीम सॉन्ग था, तुम्हें पता है कहाँ से था वो थीम सॉन्ग? मैंने कहा हाँ, आई नो दी ओरिजिनल थीम सॉन्ग, आई मीन गिव अवे का क्वेश्चन मैंने ही बोला, बॉलीवुड वाला नहीं, दी ओरिजिनल सॉन्ग। देन ही गोज लाइक हाँ, तुम्हें पता है कहाँ से था? मैंने कहा हाँ, इट वॉज बाय बॉबी डैरन फ्रॉम दिस मूवी कम सेप्टेम्बर। एंड ही इज लाइक बिल्कुल सही जवाब, तुम जीत चुके हो मेरी तरफ से गिव अवे, मैं पर्ची भेज रही हूँ, आप जाके पिज्जा खाओ। मैंने कहा ठीक है, कि मेरा भी गिव अवे जीतना हो गया। रहमान जी, आई एम काउंटिंग ऑन दैट पर्ची। हाँ, मेरे को फ्री पिज्जा चाहिए अब। आई एम जस्ट जोकिंग, मैं बस मजाक कर रही हूँ। तो बिना एनी वेज बोले, लेट्स लिसन टू दिस अदर सॉन्ग। दिस इज दुर्गा, बेस्ड ऑन राग दुर्गा बाय दिस इनक्रेडिबल बैंड कॉल अद्वैता।
1: देना।

गाइज, आपने कॉकटेल 2 देखी कि नहीं अभी तक? मैंने तो नहीं देखी यार, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है जाने का. आई रियली नीड टू गो एंड वॉच द मूवी. मेरी दोस्त रुचि भी आज आज मुझे पूछ रही थी, चले चले. मैंने कहा यार, संडे शाम को ही टाइम मिलेगा, उसके अलावा टाइम ही नहीं है मेरे पास. इतना काम मतलब लोग समर में चिल करते हैं और समर में हमारा काम डबल हो जाता है भाई. सच इज लाइफ, वॉट टू डू. लेकिन अगर आपने नहीं देखी है कॉकटेल 2, देन यू शुड गो वॉच इट, बिकॉज आई हर्ड द ड्रामा, रोमांस एंड फ्रेंडशिप, दे आर बैक विद अ फ्रेश ट्विस्ट. वेल, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति शैनन एंड रश्मिका मंदाना, अ न्यू स्टोरी विद न्यू इमोशंस एंड ब्रैंड न्यू कॉकटेल ऑफ लव, फ्रेंडशिप एंड हार्ट ब्रेक अवेट्स यू. देयर इज अ लव ट्राइंगल व्हिच इज ऑलवेज अमेजिंग एंड जूसी, यू नो, राइट? वी नो, यू नो, इट्स लाइक अ स्टेबल रिलेशनशिप that has kind of become extra stable, and then comes a spicy tadka on top, and then you don't know what's happening, you know. So, aage chalte hain, let's listen to one song from Cocktail 2.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
9: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो।
11: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
13: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens, and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings, and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
14: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khan Zada 682-551-6500. The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.

भाई दूसरे वाले गिव अवे का टाइम आ चुका है. आर यू ऑल लिसनिंग? नहीं लिसन कर रहे हैं तो अभी लिसन करिए, क्योंकि दूसरा वाला गिव अवे मैं अभी बजाने वाली हूँ. तो रेडी हैं अपना फोन नंबर डायल करके? भाई जो लेट ज्वाइन करें उनके मैं दोबारा बता दूँ व्हाट इज द गिव अवे. आपके लिए मैं एक गाना बजाऊंगी, आपको उस गाने को सुन के बताना है व्हाट इज द बॉलीवुड मेक ऑफ द सॉन्ग और बॉलीवुड वर्जन ऑफ द सॉन्ग. ओके, सो आर यू ऑल रेडी? वेल, दिस इज ए वेरी वेरी पॉपुलर ट्यून फ्रॉम लाइक द 90s. आई मीन, अगर आपको ओरिजिनल बैंड का नाम पता है, नहीं पता है तो आई एम श्योर पता होगा. मैंने आई सैंग लाइक ट्यून्स फ्रॉम दिस बैंड व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल और मिडिल स्कूल. माय म्यूजिक टीचर यूज्ड टू मेक अस सिंग इट. इट्स लाइक वर्ल्ड म्यूजिक स्टफ एंड ऑनेस्टली इट्स लाइक मोर लाइक एलिवेटर म्यूजिक. जब आप बड़े अच्छे से फैंसी से 5-स्टार होटल में जाते हैं ना, उसके एलिवेटर में जाके वो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक नहीं बजता, इट्स लाइक दैट. ओके, लाइक 90s के होटल का एलिवेटर म्यूजिक. अभी वो एलिवेटर म्यूजिक हैज चेंज्ड अ लॉट, बट तब का. और उसका जो हिंदी वाला वर्जन है, आई विल गिव यू अ हिंट. इट्स गॉट 3 कैरेक्टर्स. अच्छा नहीं यार, ये बहुत इजी है, मैं नहीं दे रही हिंट, आपको पता चल जाएगा. अगर कॉल नहीं आती है ना मेरे पास फटाफट से, तो मैं हिंट दूंगी व्हाट से, है ना? दैट्स फेयर, राइट? तो विदाउट

यू गाइस, अभी ये जो गाना जो बज नहीं रहा था उसके ना बीच में ना बैकग्राउंड में वीडियो भी चल रही थी उसकी, और वीडियो में तो कुछ और ही हो रहा है. आई मीन इट्स सपोज टू बी अ सेंसुअल वीडियो वेयर दे आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर इच अदर, लेकिन उनके डांस मूव्स इतने खतरनाक है ना, ऐसे डरा देने वाले हैं. तो वहां पे देर इज अ थर्ड पर्सन ऑल्सो बाय द वे इन द मूवी. आई डोंट नो अगर आपने मूवी देखी है, इट्स फ्रॉम द सबसे बड़ा खिलाड़ी, यू नो दैट एरा वेयर अक्षय कुमार की सारी मूवीज की टाइटल में खिलाड़ी एक होता था ना. तो बेसिकली इसका मूवी का टाइटल नाम था सबसे बड़ा खिलाड़ी. खिलाड़ी और द एक्ट्रेस वॉज ममता कुलकर्णी, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन रेखा वॉज ऑल्सो देयर इन दिस मूवी. लेकिन ये वाला जो गाना है ना, तो यहाँ पे ये लोग अपना, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर ट्रू प्यार, ट्रू लव, आहा, सेंशुअल, सो रोमांटिक एंड यू नो ऑल ऑफ दैट. इट इज सपोज टू बी दैट वाइब, बट अनफॉर्चुनेटली, नॉट अनफॉर्चुनेटली, आई मीन आई डोंट नो वॉट वॉज गोइंग ऑन इन द 90s, बट देर वॉज, इट वॉज एनीथिंग बट सेंशुअल. इट वॉज लाइक दे, इट्स सो अग्रेसिव, इट्स सो लाइक, मतलब इट्स सो फनी द होल पिक्चराइजेशन. और वहाँ पे जो थर्ड पर्सन है मोनीश बहल, हु स्टैंडिंग इन द कॉर्नर बीइंग द क्रीप दैट ही इज सपोज टू बी इन द मूवी, ही इज द वॉचर. वो उसके एक्सप्रेशंस में भी ये पता चल रहा है कि वो सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे. इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस और इंस्टेड ऑफ लाइक गंदी नजर से देखना, वो उसकी शक्ल पे ना कंफ्यूजन हो रहा है. एंड देन ही इज लाइक, हिज फेस इज लाइक, व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर, लाइक ये कर क्या रहे हैं, प्यार कर रहे हैं या कुछ और चल रहा है यहाँ पे. कुछ और ही चल रहा है यार, पता नहीं, कुछ तो चल रहा है, बट इट वॉज डेफिनेटली नॉट वॉट वॉज इंटेंडेड. और लास्ट में ममता कुलकर्णी एक एप्पल उठाती है और एप्पल खाती है, तो लाइक आई डोंट इवन नो वॉट दैट मीन्स. आई मीन आई नो काइंड ऑफ नो वॉट दैट मीन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द 90s, सेंसर बोर्ड वॉज ऑन अनदर प्लेटफॉर्म. एंड देन मोनीश बहल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही इज ऑल्सो अरेंजिंग एप्पल्स वाइल वॉचिंग दिस, यू नो, कपल डूइंग वट एवर दिट इज दैट दे आर ट्राइंग टू डू बट क्लियरली नॉट डूइंग. सो आई, द होल थिंग वॉज सो फनी. आई एम वॉचिंग दिस, मैं सोच रही चल क्या रहा है, आई एम हैविंग दिस सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट यहाँ पे खड़े होके, मुझे शर्म आ रही है देखते हुए. मैंने कहा यार ये चल क्या रहा है, कुछ भी चल रहा है यहाँ पे. तो कॉमेडी से याद आया, द बेस्ट कॉमेडी मूवी, द बेस्ट बॉलीवुड कॉमेडी मूवी इज अंदाज अपना अपना. तो ये गाना, मैं अगर कॉमेडी बोलो और ये गाना ना बजाओ तो थोड़ी ना चलेगा. तो ये गाना सुनते हैं, चलो.

यार ये मूवी इतनी सही है ना, एक वॉच पार्टी बनती है फीफा खत्म हो जाने के बाद ना, एक अंदाज अपना अपना की कोई वॉच पार्टी बनाते हैं सारे मिलके, एंड वी शुड ऑल वॉच इट टुगेदर एंड लाफ लाइक क्रेजी पीपल, है ना. मतलब इट इज द बेस्ट मूवी बॉलीवुड हैज एवर मेड इन माई ओपिनियन. इट इज सो फनी, देर इज नॉट वन मोमेंट वेर यू विल नॉट नॉट लाफ. ठीक है, सारे एक एक जो डायलॉग है ना, मतलब दे आर सच गोल्डन डायलॉग्स. फॉर एग्जाम्पल, क्राइम मास्टर गोवा नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूं मैं, सुनो सुनो दुनिया के लोगों सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो, वाह वाह क्या डायलॉग है. और एक एक करके ना मैं ये डायलॉग्स पढ़ी थी, आई लिटरली ओपन्ड एन आर्टिकल जिसमें बेस्ट डायलॉग्स लिखे हुए थे, और मैं पढ़ते पढ़ते मैं सिचुएशंस इमेजिन कर रही हूँ. मार्क यहाँ है, तेजा मैं हूँ. आई मीन दे मस्ट हैव बिन हाई ऑन समथिंग टू कम अप विद दीज काइंड ऑफ डायलॉग्स. व्हाट डू यू थिंक? मतलब कोई नॉर्मल नॉर्मल जिंदगी में ऐसे डायलॉग्स नहीं मार सकते हैं कोई, मतलब लिखना भी पड़ता है यार, मतलब सोचना भी पड़ता है ना? आपको क्या लगता है? तो आगे बढ़ते हैं, वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक, तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए एंड देन वी विल कम बैक एंड वाइंड डाउन लाइक ऑलवेज.

Guys, the most amazing thing just happened. I was on a call with one of माई listeners, and क्योंकि मैंने अभी बीच में ना कुछ एक चीज़ के बारे में बोला था, यू नो, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ देव डी, हाउ दे काइंड ऑफ अडेप्टेड इट फ्रॉम द एक्चुअल स्टोरी एंड एवरीथिंग. तो आई गॉट अ कॉल, उन्होंने मुझे पूछा कि आप डीपीएस से हो. मैंने कहा हाँ, मैं डीपीएस से हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल से हूँ. कहते आई एम ऑल्सो डिपसाइड. अरे, कॉमन कॉमन कनेक्शंस, इतना मिलके इतना मजा नहीं आता कि यू मेक सम फ्रेंड्स कहीं दूर, किसी दूर से देश में. आप वहां से कहाँ से, कौन कहाँ से फ्रेंड्स बन जाता है पता भी नहीं चलता. और ये हमारी लाइफ है ना, वी हैव टू फाइंड न्यू कनेक्शंस एवरी टाइम. आई फील लाइक एवरी 5 साल में लोगों के फ्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, एंड वी हैव टू कीप मेकिंग न्यू न्यू फ्रेंड्स. एंड आई लव द फैक्ट दैट दिस रेडियो हैज़ गिवन मी दिस प्लेटफॉर्म टू मेक सो मैनी अमेजिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस. आई लव दैट. इफ यू गाइज वॉन्ट टू कनेक्ट विथ मी मोर ऑन द रेडियो, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इपी डॉट म्यूजिक, एंड इट्स इपी डॉट म्यूजिक, IPPI डॉट म्यूजिक. एंड देन यू कैन फॉलो एंड यू कैन सी सम रेगुलर अपडेट्स दैट आई कीप पोस्टिंग. एंड मेरी लाइफ की अच्छी अच्छी चीज़ें, मेरी लाइफ की बुरी बुरी चीज़ें, सब, मतलब जो भी, बहुत बहुत ज़्यादा बुरी तो नहीं, जस्ट नॉर्मल वाली चीज़ें, वो भी आई कीप अपडेटिंग ऑन माई सोशल हैंडल. बट बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो, आई शुड डू वन अनाउंसमेंट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विद यू? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स? एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. एट पैशन हेल्थ, यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर फैमिली. फॉर यू, योर फैमिली, एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. एंड दैट इज नॉट ऑल, दे आर ग्रोइंग, दे आर हायरिंग. इफ यू आर ए एक्सपीरियंस्ड प्राइमरी केयर डॉक्टर, एंडोक्रिनियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, साइकियाट्रिस्ट, और फुल टाइम पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज अगर आप ढूंढ रहे हैं, एंड इफ यू आर अ डॉक्टर, देन यू मस्ट रीच आउट टू देम. दे आर हायरिंग. रीच आउट, सेंड योर रेज्यूमे टू पैशन हेल्थ फिजिशियंस एट gmail.com और टेक्स 2174544639, और विजिट पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम. कॉल 2146666259. ठीक है, वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक इन लेस देन 1 मिनट. तो मैं ऐसे ही जेनेरिक सा गाना बजाती हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू सेव द गुड सॉन्ग्स फॉर आफ्टर 9:30, बिकॉज वी ओनली हैव लास्ट 30 मिनट्स ऑफ माई शो फॉर दिस वीक. यू गाइज, सिर्फ 30 मिनट. सो स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस, एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
4: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
5: It's Lawson.
4: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
5: It's Lawson.
4: Daddy, what is the law?
6: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
7: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
2: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
8: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
9: This is Uday Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.
10: Friends, last ka aadha ghanta baki hai, and before we wrap up for tonight, my last announcement. उमर ख्वाजा, अगर आप किसी स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट में फंस गए हैं या फिर किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में हैं, देन अटर्नी उमर ख्वाजा विल कम एंड फाइट योर केस एंड ही विल हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व। डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज इज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। यू नीड एन अटर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पनसेटेड। आप पैसे नहीं देंगे जब तक आप जीत नहीं जाते। फॉर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल 4693005046। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स वाइंड डाउन। वी आर ओनली गोना प्ले चिल म्यूजिक स्टार्टिंग नाउ, सो हियर वी गो।

0: तुम साथ में 104.9 FM Fun Asia Radio Fun Asia Radio Pure Facts
1: This is the Fun Asia Network You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM KZMP 104.9 FM HD1 Pilot Point Texas Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2 Sanger Texas Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen
2: Official Tax and Finance Partner AG FinTax
1: Official Injury Law Partner The Law Offices of Omar Khwaja
3: In association with Passion Health Primary Care
4: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
5: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग डायमंड रिंग्स पेंडेंट्स इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर चाहे प्रपोजल हो वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो अब शाइन डबल विद इन बजट Luxury Brilliance Celebration. Tanmay Jewelers in Irving. Same order again, same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming. Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
9: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.
10: हाय हेलो नमस्ते मैं हूँ काव्या आपकी आरजे और आप सुन रहे हैं 104.9 एफएम पर रात के 10 बज चुके हैं और हम अगले दो घंटे तक आपके साथ यहाँ पर एक मीठी मीठी गाना सुनाने वाले हैं और एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी कल हम बात कर रहे थे एक इंटरेस्टिंग हॉरर कहानी के ऊपर एंड देन मैनी पीपल एक्चुअली शोड इंटरेस्ट टूवर्ड्स इट तो फिर आज भी एक बढ़िया सा एक स्टोरी है बेस्ड ऑन द यू टर्न शायद बहुत कुछ लोग जानते होंगे ये स्टोरी बट स्टिल मोस्ट ऑफ दम मे बी नॉट नो अबाउट इट बट आई एम गोइंग टू नरेट दैट स्टोरी फॉर यू इन दिस टू आवर्स तब तक लिए चलो हम एक अच्छे से गाने से शुरू करते हैं पहले हम

आप सुन रहे हैं 104.9 पर एंड आप सुन रहे हैं आरजे काव्या. सो हम बता रहे थे एक कहानी के ऊपर जो सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट ही नहीं है, ये एक फ्लाईओवर की एक्सीडेंट है. सो एक इलीगल यू टर्न के ऊपर है जो कुछ ना बहुत मौतें होते हैं इस यू टर्न पे जो जवाब किसी के पास नहीं होता है. और आज की कहानी है इस यू टर्न पर. तो लाइट को थोड़ी सी धीमी कर लीजिए, हेडसेट्स ऑन कर लीजिए और साथ चलिए उस फ्लाईओवर पर जहाँ पर ये घटना रोज़ होती आ रही है और ये जवाब किसी को भी नहीं पता है कि क्यों हो रहा है.

वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हो 104.9 फनी शेयर रेडियो। तो हम एक कहानी में रुके थे जहाँ पर इट्स अ मिडनाइट हॉरर स्पेशल। तो ये कहानी है एक फ्लाईओवर की। तो सर शुरू करते हैं ये कहानी, जो रात के अंधेरे में एक शहर का एक फ्लाईओवर हमेशा की तरह खड़ा था, जहाँ लोग रोज़ ट्रैफिक बचने के लिए वहाँ इलीगल यू टर्न लेते थे। जहाँ इंडिया की बात कर रही हूँ एक्चुअली, बट हियर थोड़े रास्ते डिफरेंट हैं। तो सिर्फ कुछ ही मिनट को बचाने के वास्ते ये लोग ना एक अजीब, लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात है कि जो भी इस मोड़ पर उन्होंने लेता था, कि जैसे कि यू टर्न यहाँ पर एक कुछ मिनटों बचाने के लिए जहाँ पर ये यू टर्न ले लेते थे, सिर्फ कुछ दिनों के बाद उन्हीं का मौत हो जाता था। और पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया एंड देन दे डिडंट फाइंड एनी क्लू, एंड देन इसका सिर्फ एक एक्सीडेंट कहा गया था। लेकिन जर्नलिस्ट को ये न्यूज़ पढ़ते हुए डाउट आई कि व्हाई इज एवरीवन, आई मीन जो कोई भी उस रास्ते में जा रहा है उन्हीं का ही क्यों मौत होता रह रहा है। एंड देन शी फाइंड्स आउट कि वहाँ पर रास्ते में बाजू में कुछ भिखारी लोग बैठे रहते हैं और सम लॉस्ट पीपल, वो वहाँ पर ना शेड बना के बैठा रहता है। तो वो जाके पूछती है कि आप यहाँ पर हर रोज़ रहते हो? तो वो आदमी बोलता है हाँ। तो फिर आप यहाँ पर कुछ नोटिस करते हो जो लोग यहाँ से रास्ते में जाते रहते हैं? आप कुछ सम

समथिंग वियर्ड, ऐसे कुछ नोटिस करते हो करके? शी आस्क एंड देन ही इज लाइक नो, एंड देन मे बी दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेल समथिंग, एंड तो उसको कुछ याद नहीं आ रहा होगा. फिर जर्नलिस्ट ने थोड़ा और फोर्स किया, शायद कुछ जानते होगा आप करके. देन वॉट शी डिड इज नेक्स्ट डे शी एक्चुअली सैट विथ हेम टू नोटिस दैट वॉट्स गोइंग ऑन इन द रोड. एंड देन वो नोटिस करती है दैट वन या टू पीपल एक्चुअली ब्रेक दैट रूल, एंड देन वो यू टर्न लेके चले जाते. एंड देन शी नोटिसेस दैट नेक्स्ट फ्यू डेज में उनका मौत हो जाता है. एंड देन शी नोटिसेस द पीपल हु आर एक्चुअली टेकिंग यू टर्न, उनका एक्सीडेंट हो रहा है, आई मीन मौत हो जा रही है, नॉट इवन नॉट एक्चुअली एग्जैक्टली ऑन द रोड बट समवेयर इन देयर डेली लाइफ में, कहीं पर तो हो रहा है वो. एंड देन ओके, इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट दिस सॉन्ग, कंटिन्यू करेंगे हम इस गाने के बाद.

वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे फनीशियर 104.9 FM। तो हम थे यू टर्न के कहानी पर। तो एक एक करके वो ना उनको एक लिस्ट बनाती थी जो कोई भी यू टर्न ले चुके थे उस रास्ते से, लेकिन उसने ना एक बिल्कुल अंदाज ही नहीं था कि वो एंड ऑफ द स्टोरी में वो भी इसी हादसे में आने वाली थी। तो क्या होता है कि पता नहीं कि अगर वो ये कोइंसिडेंट था या नहीं, तो वहाँ पर कोई अनजान साया उस फ्लाईओवर पर इंतज़ार कर रहा था शायद। फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट गाने के ऊपर।

वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे फिनिशिया 104.9 एफएम पर। तो हम बात कर रहे थे इन्वेस्टिगेटर रचना की कहानी। तो रचना ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और पुरानी फाइल खोली, पुलिस रिकॉर्ड देखने गई कि ये और मौत जो हो रही है ना, ये किस वास्ते हो रहा है, लाइक व्हाट्स द रीज़न करके। एंड देन शी सीज दैट एवरी केस में वही फ्लाईओवर है, वही लोकेशन है, वही यू टर्न के ऊपर गया है। देन लेकिन फिर वो शुरू की कुछ महसूस करने लगती है, एक अजीब सा महसूस, जैसे वो शुरू करती है ये इन्वेस्टिगेशन। वो रात को वो जो एक आवाज़ें आती है उसके घर में, फिर फिर वो उसको ऐसा अजीब सा महसूस होता है कि किसी का एक प्रेजेंस वो फील करती है उसके घर में। एंड देन लेकिन एक्चुअली वहाँ पर कोई होता नहीं है, कोई इंसान वहाँ पर होता नहीं है, बट एक्चुअली शी कैन फील दैट समवन इज़ एक्चुअली लुकिंग एट हर। तो वो महसूस करती है कि कोई तो है जो उसको नज़र देख रहा है उसको। सो सम स्पिरिट दैट इज़ एक्चुअली लुकिंग एट हर। जैसे ही वो केस से नज़दीक आने लगती है, एंड देन उसका मौत ऑल्सो कम्स क्लोजर हैज शी गोज़ डीपर इन टू द स्टोरी। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट गाने पर।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
2: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
1: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship and access to top-rated products like annuities, term life, whole life and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
4: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं फिनिशियर 104.9 एफएम पर। तो अभी कहानी और भी गहरी हो चुकी थी। रचना को पता चल गया कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था और मौत के पीछे एक पुराना राज छुपा था, एक ऐसा सच जिसे सालों पहले दबा गया था। किसी को ज़िंदगी बर्बाद हुआ, किसी की ज़िंदगी ना बर्बाद हुई थी और फिर किसी की इंसाफ नहीं मिल रहा था और अब कोई लौट कर आया था सच्चा, ये एक सच को दिखाने के लिए, यानी तो हर उस इंसान को जिसके ये गलत मोड़ लिया था यू टर्न लेकर, या लेकिन ये एक सवाल ये था कि ये क्या रोड के यू टर्न लेने का गलती था, यानी तो ये जो हमने गलत फैसला लिया था इसलिए ये मौत हो रही है। ये कहानी बताएंगे अभी अगले गाने पर का बात है।

वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं आरजे काव्या को ओनली इन 104.9 एफएम पर। तो हम कहानी पे रचना पे रुके थे, तो अब रचना को समझ आ चुका था कि ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं थी, ये कहानी एक जिम्मेदारी की थी, एक गलतियों की थी और उन फैसलों की जो जिसने ना एक ज़िंदगी पर ये गलत फैसले निकाल के हमारे साथ ना आ जाते, मतलब कि ये ना भूल नहीं सकते, उस तरह के कभी कभी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। ये सच है कि ये जो सच को सामने बुला दिया गया था कि हर एक की गलती जो फैसला लिया जाता है दैट इज़ कभी कभी गलत नहीं है, बट कभी कभी वो गलती को हम फिर से सुधार नहीं सकते हैं, उस तरह की गलती यहाँ पर इस कहानी में हुआ था। तो शी फाइनली गॉट टू नो दैट जिस किसी का भी एक्सीडेंट हो रहा था वहाँ पर, समवन वाज देयर हु वाज नोटिसिंग एंड देन शी वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर क्या हो रहा है, या नहीं तो उसको वो स्पिरिट जो महसूस कर पा रही थी वो उनसे बातें करनी चाहती थी। तो शी फाइनली डिसाइडेड टू टेक अ ह्यूज डिसीजन कि लेट्स डू इट। तो उसने भी रास्ता थोड़ा एंड देन शी टुक अ डिसीजन टू टेक अ यू टर्न, और यू टर्न लेके शी वेंट होम। एंड देन एक एक एक्सीडेंट जो यहाँ पर होता है ना, उनके घर में दे गेट अ साइन बिफोर उनके साथ वो घटना वो स्पिरिट करने वाली है। तो एवरी टाइम उनको ना एक यू वाला एक सिंबल दिख जाता है एनीवेयर। मे बी आप किसी दुकान में जा रहे हो एंड देन इफ उस पर्सन का मौत होने वाला है उस दिन, दे गेट अ साइन ऑफ समवेयर दे सी यू वाला एक साइन का ही दिख जाता है, टेलिंग एन साइन दैट दे गॉन यू नो, एक अलर्ट वाला वार्निंग स्पिरिट दे के जाती है। एंड देन शी नोटिसेस दैट यू नो इन एवरी केसेस जिसके जो भी यू टर्न मारे रहते हैं वो उनके घर उनको फॉलो करती है। एंड देन शी सीज एवरी डे व्हाट्स हैपनिंग विद देम एंड देन शी सीज दैट समवेयर साइन शी सी यू करके एक साइन दिख जाता है एंड देन शी अंडरस्टैंड्स दैट समथिंग इज गोना हैपन विद दिस पर्सन। एंड देन जब वो यू टर्न ले लेती है उसके साथ भी वही होता है दैट शी सी अ साइन कॉल्ड यू समवेयर एंड देन दैट्स अ वार्निंग साइन कि तेरे साथ भी यही होने वाला है करके। एंड देन उसका सांस एकदम ना रुक जाता है एंड देन शी कैन नॉट स्टॉप दैट वॉट एवर घटना उसको होने वाला है या उसका मौत नज़दीक आ चुकी थी। एंड देन द स्पिरिट फाइनली कम्स ऑन, लाइक दिख जाती है उसके सामने एंड देन शी टेल्स दैट कि तुम्हें वो यू टर्न नहीं लेना चाहिए था क्योंकि वो यू टर्न किसी और ने लिया था जब वो स्पिरिट लाइक जो भूत थी जो मर चुकी थी, लेट्स कॉल हैज उसका नाम था दिव्या। सो दिव्या वॉज लाइक एक दिन उसका मौत होने उस जिस दिन वो मौत हुई थी उस दिन शी वॉज एक्चुअली ट्रैवलिंग एंड देन शी फेल फ्रॉम कुछ सम काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल एंड देन फ्लाई ओवर से वो अपनी बेटी के साथ रेलवे ट्रैक में गिरी फ्रॉम दैट डिस्टेंस एंड देन she was helpless for her kid, uski bachchi ke liye. And then when she died, she see that wahan par kisi ne na u-turn liya tha and then wo u-turn ko jo brick rehta hai na usko hata ke road ke upar rakh ke kisi ne chhod ke chala gaya tha jiske wajah se uski maut ho gayi thi. To ye ek innocence, matlab ye ek innocent ka maut hui hai for no reason and then wo sawal uski mein usme baitha raha ki why did this happen to me, who is that person, kyun ye zimmedari itna halka se lekar किसी का नो मौत का जितना वैल्यू जाने जितना हो गया था वहाँ पर। एंड देन शी इज़ इन अ वे टू फाइंड आउट द हु इज़ दैट पर्सन उस दिन जिसने उसका एक्सीडेंट होने के जैसे एक दिन आ गया था। एंड देन शी डिसाइडेड टू किल एवरी वन हु एवर इज़ टेकिंग अ यू टर्न, जो कोई भी वो ब्रिक को हटा के रोड में रास्ते में से छोड़ के चले जा रहे हैं। एंड शी डिसाइडेड टू किल एवरी ईच एंड एवरी पर्सन। सो दैट इज़ वॉट शी वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल दिस अर्चना, बिकॉज रचना वॉज लाइक वाई आर यू ट्राइंग टू किल हु एवर इज़ टेकिंग यू टर्न, क्योंकि यू टर्न लेना इज इतना भी गलत बात नहीं है करके। देन यू नो द भूतनी टेल्स दैट दिस इज़ वॉट माई स्टोरी इज़, मैंने हमने ऐसे क्या किया था कि मैं और मेरे बच्ची जान खो बैठे थे बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक। एंड देन देर वॉज एन एक्चुअली अनदर ट्विस्ट इस कहानी में, जो असली क्रिमिनल था, आई मीन जो असली पर्सन था जिसकी वजह से ये लोग मारे गए थे, दैट इज एन एक्चुअली अनदर ट्विस्ट। आई विल टेल यू आफ्टर द नेक्स्ट सॉन्ग।

वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं फनेशिया 104.9 एफएम पर। तो अभी हम कहानी एंड पर लेके आते हैं। सो रचना जो इन्वेस्टिगेटर है जिसकी मौत नज़दीक आ चुकी है, एंड देन स्पिरिट मतलब भूतनी जिसका नाम दिव्या है, सो शी एक्चुअली टेल्स हर स्टोरी दैट दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद मी, दिस इज़ द रीज़न व्हाई यू आर डाइंग राइट नाउ। तो रचना एक्चुअली रिक्वेस्ट दिव्या को कि प्लीज़ गिव मी अनदर लास्ट चांस, क्योंकि मैंने ये मजबूरी में किया था जस्ट टू नो कि व्हाट्स द रीज़न व्हाई इज़ एवरीवन डाइंग हियर, ताकि कोई प्रिकॉशंस हो सके। बट तुम्हारे लिए जस्टिस मैं बिल्कुल लेकर आऊँगी, बस मेरे को एक दिन का मौका दे दो, एक 24 आवर्स, दैट आई विल इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट हु वॉज द पर्सन जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। एंड देन शी एक्चुअली उतना बोलने के बाद फाइनली दिव्या एक्चुअली एक्सेप्ट्स, एंड देन वो 24 आवर्स में शी गोस टू जो ये रिकॉर्डिंग रहता है ना जो ट्रैफिक सिग्नल का, सो शी फाइंड्स आउट दैट एग्जैक्टली द डे व्हेन शी डाइड हु वाज दैट पर्सन हु वाज ड्राइविंग एट दैट स्ट्रीट, एंड शी एक्चुअली सीज दैट दिस पर्सन नेम समवन एल्स एक्चुअली सम एक्स पर्सन, तो उसका गाड़ी का नंबर उठाकर, एंड देन शी फाइंड्स आउट द लोकेशन ऑफ हु इज़ दैट पर्सन जिसने निकाला था, एंड देन शी गोस टू दैट होम, एंड देन शी टॉक्स दैट आप याद किया है कि इस दिन में क्या हुआ था, व्हाट डिड यू डू ओवर देयर एंड ऑल समथिंग, देन ही इज़ लाइक शायद मेरे को याद नहीं, मैनी पीपल डू दैट, इट्स अ वेरी कैजुअल थिंग करके ही टॉक्स, एंड देन उनके घर में एक पिक्चर रहता है विच शी नोटिस दैट इट्स द सेम लेडी दैट शी स्पोक लास्ट नाइट, एंड देन वो पूछती है कि ये आपके क्या होते हैं करके, एंड देन ही वॉज लाइक शी इज़ एक्चुअली माई वाइफ एंड माई डॉटर हु एक्चुअली डाइड फ्यू मंथ्स अगो, एंड देन उसको चौंका देती है कि ही वॉज द पर्सन हु डिड दैट मिस्टेक, जो गलत फैसला लिया था, जिसने यू टर्न में वो एक ब्रिक को हटाकर रास्ते में छोड़ा था, एंड देन इवन इफ इज टेकिंग द यू टर्न उसने वापस नहीं डाला था, तो वो तकलीफ नेक्स्ट जो इंसान उस रास्ते में गुजर रहा है आधी रात में, तो उसी का तो नुकसान होगा ना। तो पता चला कि वो नुकसान उनकी खुद की वाइफ एंड बच्ची की हुई थी, एंड आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेटर रचना ने एक्चुअली सेट द स्टोरी दैट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एवरी डे, हु एवर इज़ क्रॉसिंग वो लेन में हर किसी का मौत हो रहा है, आपको पता है कि यू आर द रीज़न जिसकी वजह से आपकी वाइफ और बच्ची मरी गई थी, एंड देन मैं इन्वेस्टिगेट करने के चक्कर में इवन आई रीड दैट सीन, एंड देन यहाँ पर मैं उसको जस्टिस देने यहाँ पर आई थी करके, एंड देन ये सुनने के बाद हस्बैंड गेट वेरी मच ब्रोकन दैट उनके वजह ही वॉज द रीज़न उनकी इस छोटी सी फैसला छोटी सी गलती की वजह से ही लॉस्ट हिज फैमिली, एंड उस एक सैडनेस में वो खुद एक्सीडेंट वो खुद सुसाइड कर लेते बाय द टाइम द स्पिरिट एक्चुअली स्टॉप्स him not to die, and then even investigator sach malne ke baad hi she went actually down to meet with police, and then by the time they could stop he actually suicide himself because wo sach wo nahi le paya tha, so this is the story is like kuch galat matlab kuch faisla jo aap lete kabhi kabhi wo choti choti galti hai but wo kisi aur ko bada galti bhi ho sakta hai, so जिम्मेदारियाँ छोटी हो बड़ी हो इट इज़ जिम्मेदारी, नेवर इग्नोर इट, क्योंकि वो बड़ा से बड़ा हादसा भी हो जाता है। तो दिस वॉज दी स्टोरी ऑफ दिस भूतनी। अब जाते हैं हम अगले अगले गाने पर, एंड देन लेट्स सी डिफरेंट मोस्ट स्टोरीज ऑन इट।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.

वैसे दोस्तों, आपने कभी व्हाट्सएप पर किसी का लास्ट सीन देखे हैं? या ये सोचे हो कि काश वो एक मैसेज कर देंगे हमें तो अच्छा लगता ना? लेकिन अजीब होता है कि कभी ना हम किसी का इंतज़ार करते और कभी कोई हमारा। तो शायद इसलिए रात का ये वक्त इतना खास होता है कि दिन भर के भाग दौड़ के बाद ना ये रात में ये इंसान अपने दिल की आवाज़ सुनता है। तो आज का सवाल है कि अगर आप अभी किसी के एक इंसान को बिना किसी झिझक के मैसेज कर सकते हैं, तो वो कौन होता है? आपका कोई दोस्त, या आपके परिवार में से कोई, यानी तो कोई एक प्यार, या कोई एक इंसान जो जिंदगी में अभी नहीं है? ज़रूर सोचिएगा। मैं हूँ आरजे काव्या और आप सुन रहे हैं 104.9 पर।

वैसे ये गाना था फ्रॉम डंकी शाहरुख खान की. ये रिक्वेस्ट था फ्रॉम सुरैया जी एंड उनके फैमिली. ये उनके एक्चुअली उनके बेटे के लिए था, पर आई एक्चुअली फॉरगॉट टू आस्क उनका नाम. सो शी मेड अ कॉल टू टेल दैट हम एक बात कर रहे थे कि अगर आप किसी को बिना किसी झिझक के मैसेज कर सकते अभी भी एनी टाइम, हु वुड दैट बी? शायद आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके प्यार या आपके दोस्त. देन शी सेड देखिए हमारा पूरा परिवार है, हमारा भाई है जो बिना कोई झिझक के आई कैन एक्चुअली कॉल हिम और टेक्स्ट हिम और बात कर सकते. दैट्स सो लवली टू आंसर. एंड वैसे ही अगले सवाल भी मैं एक्चुअली करने चाहती हूँ कि और एक इंटरेस्टिंग है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में ना एक को एक ऐसा दोस्त रहता है जिसे ना आप रात के 2 भी बज जाए ना उनके कॉल कर सकते हो आप, या नहीं तो ये कह सकते हो यार बोल यार क्या हुआ है अभी करके. तो फिर ये आजकल के सोशल मीडिया पर ना ये 1000 लोग मिल जाते हैं, लेकिन लेकिन वो एक इंसान मिल जाता है, आई मीन वो एक इंसान मिलना ना मुश्किल हो जाता है. तो फिर वो कौन है आपके जो 2 बजे के दोस्त को भी फ़ोन करके आप पूछ सकते, या वो रेडी होते हैं आपके फ़ोन उठाने के लिए भी? मैं हूँ आरजे काव्य और आप सुन रहे हैं 104.9 FM पर. और वैसे ही दोस्तों के नाम पर हम आपके लिए भी गाना प्ले करने वाले हैं फ्रॉम दोस्ताना सॉन्ग.

वैसे मलिक जी ने कॉल किया था एंड देन वो हमारे सवाल के जवाब दे रहे थे कि कोई है जो 2 बजे के भी आई मीन 2 बजे में भी आपका एक दोस्त जो फ़ोन करने में भी उठा लेंगे बिना कोई झिझक के एंड देन डजंट मैटर व्हाट टाइम इट इज़। अभी सपोज़ हमारे यहाँ डे टाइम है फिर इंडिया में तो बहुत लोग हमारे दोस्त लोग हैं जो रात के 2 बजे होंगे एंड बिना कोई तकलीफ हुए स्टिल हिल कॉल एंड देन आप कौन सा भी बकवास भी बात कर रहे हो दो इट्स नॉट अर्जेंट बट स्टिल हिल पिक अप एंड हिल स्टिल टॉक टू यू इज़ एक्चुअली अ रियल फैंटास्टिक लकी है वो जो उनके जैसे दोस्त से मिले। तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज शादी शादी आई थिंक हिज नेम शादी वॉज हिज नेम ऑफ मलिक्स फ्रेंड एंड जैसे मैं भी एक हॉरर कहानी बात कर रही थी ऑन द स्टोरी बेस्ड ऑन यू टर्न वैसे ही वॉज जस्ट एक याद आया तो उनको एक कहानी जो एक्चुअली रियल है एंड ही ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड दैट माहौल एंड ही वॉज टेलिंग मी विच अकर्ड 10 years अगो। उन्होंने एक घर लिया था जहाँ पर हिज फैमिली एंड ही वॉज लिविंग ओवर देयर फॉर 3-4 years एंड देन बाहर एक्चुअली आई डोंट थिंक सो दे वर एबल टू चेंज देयर हाउस इमिडिएटली बट बहुत कुछ दे हैव सीन इन दैट हाउस। मे बी फर्स्ट और 2 days में दे रियलाइज आई मीन उन महसूस करने लगे सम नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम दैट घर एंड देन रात के समय सोते समय अचानक से पियानो का आवाज़ सुनाई देता है इट सीम्स एंड देन मे बी दे थाट मे बी मेरे शायद कान बज रहा होगा करके बट बाजू में उनको भाई को भी वैसा लगा एंड देन वो भाई बोल रहे हैं कि अरे मेरे को पियानो का आवाज़ आ रहा है कहीं से करके एंड देन इवन ही गॉट स्कैर्ड एंड वाज लाइक नथिंग नथिंग भूल जाओ एंड देन सो जाओ करके एंड देन इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द डेज हर रात ये हो रहा था इट सीम्स एंड देन सोते समय ऊपर रूफ से कोई ऐसे बच्चे भाग रहा है ऐसा आवाज़ आता था दो इट वॉज़ अ इंडिविजुअल हाउस कोई अपार्टमेंट नहीं था कि एंड देन दे वेर लाइक स्कैर्ड कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है करके कोई बच्चे भी नहीं है कौन इतना शोर बचा रहा होगा करके एंड देन कुछ रातें थे जहाँ पर वो लाल कलर की झिटकने वाले भी थे ऑन रूफ और नहीं तो कुछ कपड़े के ऊपर बहुत ऐसे कुछ अजीब चीज़ें चल रहे थे उनके घर में नॉट जस्ट विथ वन और टू पर्सन बट हर एक परिवार के साथ होता था इट सीम्स दे हैव एंड देन अच्छा हुआ कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है एंड देन विद इन फ्यू ईयर्स दे मूव्ड आउट सेफली एंड एंड एक्चुअली व्हेन दे एक्चुअली मूव टू दैट हाउस उनका एक्चुअली काम भी ले ऑफ हो गया था बहुत नुकसान हो रहा था बहुत अजीबो चीज़ हो रहे थे एंड देन इट्स एक्चुअली रियल एंड आई एक्चुअली बिलीव ऑल्सो बिकॉज देर मैनी स्पिरिचुअल लेफ्ट इन फ्यू हाउसेज सो सोच समझ के लिएगा बिकॉज एक बार डिसीजन आप ले लेंगे तो आप बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत इंतज़ार करना पड़ता है टू गेट आउट ऑफ वन ऑफ प्लेस एंड ये कुछ सालों के बाद फाइनली दे गॉट आउट एंड उनको वापस एक अच्छी काम मिली है एंड देन सुकून से ज़िंदगी जी रहे हैं एक्चुअली। सो दिस वॉज अ स्टोरी दैट ही वॉज शेयरिंग विथ मी। नेक्स्ट टाइम मलिक जी मैं ना आपको एयर में कनेक्ट करूँगी प्लीज़ आपका कहानी भी ऐसे कुछ बताइएगा बहुत इंटरेक्टिव था एंड जिस तरह से आप डीपली डिस्कस कर रहे थे आपकी कहानी के बारे में और उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था फ्रॉम सॉन्ग मुन्ना भाई MBBS छन छन आपके लिए ये गाना।

वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं 104.9 FM फिनिशिया पे। तो कभी नोटिस किया है कि आप बचपन में भी ना हम जल्दी बड़े होने चाहते हैं और फिर जब बड़े हो जाते हैं फिर दोबारा बचपन बनने जाते हैं। जैसे कि वो जो संडे का मॉर्निंग रहता है, जैसे वो हमारे एग्ज़ाम्स के बाद वो जब समर की छुट्टियां शुरू होने वाली खुशियां, और फिर वो कार्टून्स नेटवर्क जहाँ पर मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते जब छुट्टियाँ शुरू जाते हैं और फिर हम टीवी देखने लग जाते हैं या सुबह से शाम तक। मेरे को याद है कि मैं छुट्टी के टाइम में ना आई हूँ, मैं बहुत जल्दी उठ जाती थी एंड देन 8 बजे डिज्नी चैनल में वो मिकी माउस वाला शो देखने के लिए मैं उठ जाती थी। एंड देन लाइक सच काइंड ऑफ मेमोरीज, एंड देन स्कूल की छुट्टियाँ लाइक हाउ आई सैड, एंड देन खुड बी लाइक बिना कोई वजह की खुशियाँ बस ऐसे ही, क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स होता ही नहीं है उस टाइम पे। तो एक छोटी छोटी चीज़ में भी इतना खुशी हो जाते हैं, वो याद कर करके बिना कोई वजह से खुशी आ जाता है। तो अगर आपको ऐसे कुछ बचपन में सिर्फ एक 10 मिनट का एक ऐसे चीज़ वापस आ जाए, काश मैं अभी ये मज़ा ले पाऊँगी या ले पाऊँगा, व्हाट कुड दैट मोमेंट कुड बी, प्लीज़ डू लेट मी नो।

वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे 104.9 FM पर। वैसे सुरैया जी बता रहे थे कि उनको बेटे को ना ये शाहरुख खान के गाना बहुत पसंद है, एंड देन शी आई मीन दे एक्चुअली लिसन टू फनीशिया 24 आवर्स, क्योंकि फनीशिया उनको बहुत फेवरेट है, एंड देन ही लिसन टू अस पूरा दिन। बहुत अच्छी बात है कि यू नो किसी को हमारे फनीशिया से बहुत खुशी मिल रही है सुनने में, एंड देन उनका दिन बहुत अच्छे से गुजरता है हमारे बातों से, हमारे गानों से। तो उनके लिए नेक्स्ट सॉन्ग मैं एक्चुअली शाहरुख खान का प्ले करने चाहती हूँ, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग लाइक ऑल टाइम, एनी टाइम। बहुत मज़ा आता है इस गाने से।

हाय कटरीना के ना डांस देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना कि काश ना मैं भी इनके जैसे डांस कर पाऊँ, क्योंकि दे इतने ग्रेसफुली शी डांस यू नो. बट एक्चुअली इवन आई एम अ गुड डांसर, बट आप सब देख नहीं सकते क्योंकि आप मेरे को सिर्फ सुन सकते हो रेडियो में. वैसे कटरीना का डांस देख कर मेरे को ये एक चीज़ याद आया कि शी एक्चुअली सेड इन वन ऑफ द इंटरव्यू दैट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ हर इंडस्ट्री के टाइम पे ना उनको ये डांस करना ज़्यादा आता नहीं था. एंड देन देर वॉज सम वन, आई थिंक सम डायरेक्टर दैट शी डिडंट मेंशन, ही एक्चुअली सेड कि ना कि कटरीना को बिल्कुल डांस करने नहीं आता है, शी एक्चुअली डज वेरी वर्स्ट. एंड देन उसने इसको ना एक चैलेंज ले लिया व्हेन शी हर्ड दिस, एंड देन यू कैन सी हाउ शी परफॉर्म्ड, लाइक स्टेज थोर परफॉर्मेंस शी गिव्स, एंड लाइक डांस मतलब कटरीना, कटरीना मतलब डांस, द वर्ल्ड नोज हाउ डज कटरीना डांस, एंड देन कम्स नोरा फतेही एक्चुअली. बट या द बॉस इज बॉस ऑलवेज. सो उसी खुशी में कटरीना का और एक गाना डाले जाएंगे हम आपके लिए.

0: तो हम बात कर रहे थे कटरीना की डांस की जर्नी दोनों कि किसी ने कुछ बोला था एंड देन शी एक्चुअली डिड इट. ये है एक जलवा, मतलब एक आग जो आपके अंदर आ जाती है कि कोई कहता है कि यह तुमसे हो ही नहीं सकता है करके, एंड देन यू एक्चुअली प्रूव इट दैट यू कैन डू इट. ये आग इज़ द ओनली रीज़न, आई मीन एक आपकी लाइफ का एक पर्पस है व्हेन इट कम्स. इफ समवन टेल्स यू इफ यू कैन नॉट डू इट, ऐसे एक चीज़ हो सकता है कि मेरे साथ भी हुआ होगा कि यू नो मैनी पीपल डिड टेल मी कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा और समथिंग लाइक दैट. बट इट टेक्स टाइम टू लर्न समथिंग एंड देन प्रूव इट समथिंग. बट आपके अंदर इफ़ यू हैव दैट जलवा एंड दैट जोश, देन डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं. सो दिस वॉज अ रिमाइंडर एंड आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड द शो इन लाइक 9 to 10 minutes. एंड देर इज अ डेली रिमाइंडर विच आई ऑलवेज डू बिफोर आई एंड द शो कि स्टे हाइड्रेटेड बिकॉज इट्स अ समर, एंड देन इवन इफ इट इज़ नॉट समर प्ली हमेशा स्टे हाइड्रेटेड. एंड देन आजकल के खाने में बहुत कुछ मिलावट होती रहती है, एंड देन वी जस्ट कीप थिंकिंग. सम पीपल डाइट में रहते हैं, सम पीपल आर लाइक सो मच सिक्योर कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, यू नो. बट एंड मैनी पीपल हैव टू स्टे लॉन्गर, तो फिर उनके लिए तो हेल्थ को तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू टेक केयर. तो रिमाइंडर है कि कोक शोक सोडाज अवॉइड कीजिए. यू हैव मैनी ऑप्शन लाइक लस्सी, नारियल पानी. यार इंडिया के नारियल पानी भी यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि इतना ये जो हमारा इंश्योरेंस हो या हेल्थ केयर में इतना पैसा डालने से अच्छा है कि नारियल पानी में डालो यार, यू विल गेट हाइड्रेटेड एंड देन यू नो मैनी थिंग्स गोज ऑन योर इन योर बॉडी. So yeah, listen to the next song.
1: I want you to work it for me like this.

0: ये था गाना अल्लाह उदाई है फ्रॉम रेस एंड मेरा टाइम हो गया साइन ऑफ करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड शेयरिंग योर स्टोरीज एंड जो भी मैं सवाल पूछ रही थी उसका आंसर देने के लिए एंड मेकिंग इट सो इंटरेक्टिव शो फॉर मी. एंड बी सेफ, ड्राइव सेफ, हैव अ गुड नाइट.
1: मधम मधम तेरी गीली हंसी से.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beta, 95% आए?
4: हाँ मम्मी.
3: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
5: मेरा?
3: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
7: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

जहनसी, इतनी रात गए आप हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ तो बात होगी इस चैनल में। रात भर आपके साथ फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल, धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्रे परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: हाय गाइस, दिस इज टाइगर श्रॉफ, एंजॉय फन एशिया रेडियो।

0: दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।
1: क्यों इतनी लंबी होती है चांदनी रात?

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

0: कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
4: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming. Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: Phoenicia Radio 104.9 FM.
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जय

KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

104.9 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।

0: देसी स्वैग, देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग फन एशिया, फन एशिया।
1: Oh.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

Bringing South Asia closer, more closer. Phonasia, 104.9 FM.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है, स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: Listen close what I gotta say, 'cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go. Yeah.

0: are capable of anything.
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Phinacia Radio.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
5: Hi, this is Janvi Kapoor, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Panacea Radio.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है, आदत से नहीं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: 94.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.
1: तुमने दुबई के चक्कर में हमसे बिया किया? हमसे कतई प्यार नहीं था, हुँ?

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

म्यूजिक MG, तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़के।

0: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
1: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
4: Hi, this is Sefali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.
5: BBC Swag. Bollywood Tag. Fun Asia.
6: Fun Asia.
7: Now you are coming.

0: मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ।
1: अच्छा सुना सुना।
0: हाँ वो मेरी प्रैक्टिस नहीं अभी,
1: अगली बार प्रैक्टिस करके आना और किसी और के लिए मत गाना।

0: 104.9 FM Funny Show.
1: Funny Show.
0: Not just a radio. Not just a radio. It's a mindset of entertainment.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
5: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
6: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
7: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
8: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
9: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
10: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है. ये वाला बहुत हैवी है. और ये कब पहना था लास्ट टाइम?
11: तो पहनती क्यों नहीं हो?
10: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेजन टाइप.
11: तो रोज वाला ले लो.
12: India's most loved everyday jewelry brand, Karat Lane is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. Karat Lane now open next to Tanishq in Frisco.
13: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience. With CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
14: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
15: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
16: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
17: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस.
16: विजिट फैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन.
18: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
19: हाँ.
18: घर रिलोकेट करनी है?
19: हाँ.
18: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
19: हाँ भाई हाँ.
18: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
3: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
1: बेटा, 95% आए?
6: हाँ मम्मी.
1: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
5: मेरा?
1: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
5: वो
16: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
2: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
3: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
2: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
4: समझ नहीं आ रही, टिकट लूं तो कहां से लूं?
5: इट्स लॉसन।
4: किससे बात करूं, सारी जानकारी कौन देगा?
5: इट्स लॉसन।
4: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
6: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। The Travel Experts, Lawson Travel.
7: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
9: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
9: कहाँ?
11: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब एंड अपस्केल।

0: restaurant for the perfect family dinner.
1: Foodistan in Aubrey. Everything desi. One place, one vibe.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
7: लिया।
6: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
7: नहीं आया।
6: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772। That's 972-863-7772.
8: Visit www.senadainc.com today.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
10: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: Thank you very much for staying with me. And we have the final hour of our program that's coming up. I promise you, you're going to love it also. So let's go ahead and get prepared for that. And if you'd like to talk to me right now, I'll take your calls. 972-235-5555. Comments, feedback, suggestions, anything on your mind. Let's get it here. It's 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
9: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो।
11: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
13: डिड यू नो लेसिक इज जस्ट वन ऑफ 6 वेज टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट्स? आई एम डॉक्टर शहजाद बातलीवाला। Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
9: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
13: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
14: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
15: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
14: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
15: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
16: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
17: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panch Tara is now open at a new location in Allen. Wahi swaad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhate, roz taazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panch Tara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
18: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
19: हाँ।
18: घर रिलोकेट करनी है?
19: हाँ।
18: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
19: हाँ भाई हाँ।
18: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
2: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
19: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
19: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभालेंगे?
19: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
16: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
0: Ladies and gentlemen, if you are just joining us, do receive my very warm welcome to this final hour of our show this morning. We are rounding off this work week. It's Friday, the 26th of June, and we are heading towards lots of sun, hot, dry, windy day ahead of us, and it's going to get even more so over the weekend. Welcome to the show.

0: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है, ये वाला बहुत हैवी है। और ये कब पहना था लास्ट टाइम?
1: तो पहनती क्यों नहीं हो?
0: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेशन टाइप।
1: तो रोज वाला ले लो।
2: India's most loved everyday jewelry brand, CaratLane is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. CaratLane now open next to Tanishq in Frisco.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Oura can help us save up to 50% on our total debt. And the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
4: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
5: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
7: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
8: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
9: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
10: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
11: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian, made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali. Aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
7: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
12: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
14: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, you're

0: order, mind just get coasted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है.
2: प्लान या होप?
1: मतलब?
2: मतलब है प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
1: ओके, तो मेरा वाला होप है.
2: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं.
1: क्यों?
2: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
3: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट द वेल्थ टैक्टिक.com. We go.

0: leaving you with these explosive beats, dance vibes, bass drops and full club energy as you get ready for the weekend. Vibe lit, Chandigarh vibe, motor bump, feel that drive. Left, right, slow motion move. It is now 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
5: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
5: ये क्या होता है?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
8: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available. Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
9: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
10: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
11: It's Lawson.
10: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
11: It's Lawson.
10: Daddy, what is the law?
12: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
13: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
14: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
13: कहाँ?
15: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
14: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब.
13: मामू, देखो क्या हो गया.
16: ओ, क्या हो गया?
13: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
16: ओए, जर्मन का कमाल है.
13: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
16: ओ नहीं, ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू, और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं, और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
17: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
13: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
18: Excuse me. It's called being loyal.
13: It's called being predictable.
18: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
13: And what's so special at Neon Cactus?
18: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
13: Not bad.
18: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
13: Okay, this I didn't expect from you.
18: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview,
11: Mexican cuisine with global influences.
19: Hi, this is Stephanie Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

are tuned into Fun Asia Radio 104.9 FM Gapshap Gali with me too. I am ready to begin. Lekin show shuru karne se pehle, it is important ki main Sharnam ji ko thank you kahun because she brings such an amazing, well-rounded show ki maza aa jata hai unka show sunne mein. And give me this opportunity ki aapke behalf pe bhi main shukriya kahun Sharnam ji ko for that amazing morning drive time show that she brings for us Monday to Friday only on Fun Asia Radio 104.9 FM. Getting ready to start the last show of the week, यानी कि फ्राइडे का शो आ चुका है और फ्राइडे को हम सारे आरजेस ना ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और कभी कभी शायद आप लोगों को लगता हो कि ये आ गया फ्राइडे और ये इनका एक्साइटमेंट शुरू हो गया. तो आज बिल्कुल नॉर्मल सा फ्राइडे करते हैं. अब शो के चलते चलते अगर एक्साइटमेंट आ जाए तो आ जाए, ये देखते हैं.

यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मीठू. कुछ सॉफ्ट स्वीट नंबर्स से शुरू कर रहे हैं और शो के ख़त्म होते होते जब हम आखिर में फीफा सेगमेंट लेकर आएंगे तो हम टेम्पो भी बढ़ाएंगे आपके लिए. आफ्टर ऑल इट इज़ फ्राइडे. फिर फ्राइडे पे आ गई. मैंने आज सोचा है कि मैं थोड़ा ना नॉर्मल वाला शो करूँगी. फ्राइडे को हम सुपर एक्साइटेड होते हैं और वो सुपर एक्साइटमेंट काफ़ी कई बार जो है हमारी लाउड हो सकती है क्योंकि अभी दिन शुरू ही हुआ है, पूरा वर्क डे बाकी है. लेकिन क्या है ना कि हमारा एंथुजियाज्म यहाँ पे इतना जोर ले लेता है कि कई बार इट कैन गेट अ बिट इरिटेटिंग ऑल्सो फॉर पीपल. नॉट दैट एनीबडी हैज़ टोल्ड मी दैट बिकॉज वी ऑल हैव दैट फ्राइडे एनर्जी इन अस. लेकिन होता है यार, कुछ कुछ लोगों के काम अधूरे होते हैं, कुछ कुछ लोगों के वीकेंड बहुत जैम पैक्ड है, दे आर नॉट टू एक्साइटेड अबाउट दैट. तो लेट्स कीप इट कूल हियर एंड धीरे धीरे बढ़ाएंगे यार टेम्पो. वील डू ऑल ऑफ दैट एंड मच मोर. आफ्टर ऑल दिस इज फनीशर रेडियो 104.9 FM, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी एंड द मूड्स टुगेदर राइट हियर. मैं ना यहाँ पे आपको कहना चाहती हूँ कि यू नो डैलस में आके जो मूव करते हैं, रीलोकेट करते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से घर खरीदने का सोचते हैं. कभी कभी घर खरीदने का सोचते हैं या तो कभी कभी अपना घर बेचकर बिगर हाउस दैट दे वांट टू बाय और मे बी दे वांट टू रीलोकेट सम प्लेस एल्स एंड दे वांट टू सेल देयर होम. और ऐसे में इतने बड़े डिसीजंस में डोंट यू थिंक वी नीड पीपल जो जिनको हम पहचानते हैं पहले से, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन लाइफ का आप कर रहे हो और उसमें अगर आप अनजाने लोगों के पास जा रहे हो तो इट कैन बी डॉन्टिंग या सीरियसली. और ऐसे में नवनीता खेमका का नाम आपको याद आना चाहिए बिकॉज शी इज विथ केलर विलियम्स रियल्टी एंड शी कैन गाइड यू एवरी स्टेप ऑफ द वे. मतलब वो पर्सनल टच भी रहेगा. नवनीता को कौन नहीं जानता है, शी इज वन ऑफ आर फेवरेट आरजीज ऑन फनीशर रेडियो राइट. तो आप मतलब उनके साथ अपनी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं और वो अपना जो एक जेन्युइननेस लेकर आती हैं, शी केयर्स फॉर ऑल हर लिसनर्स एंड हर क्लाइंट्स एज वेल. नाउ दैट शी इज विथ केलर विलियम्स रियल्टी, यू कैन मेक श्योर दैट द एडवाइस एंड द गाइडेंस कम्स फ्रॉम अ पर्सन जिनको आप पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानते हो. सो यस, नवनीता खेमका का नंबर है 347-449-4242 और स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555.

इट इज गपशप गली विथ मी टू। अगर आज की तारीख आप भूल रहे हो तो ना भूलें, क्योंकि इट्स अ सिक्स डे ऑफ द वीक और ये जो महीना है ये भी है सिक्स 6/26/2026, दैट्स द डेट एंड इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग दैट वी आर ऑन वीक 26, लेडीज एंड जेंटलमैन। सोचा कि ये बार थोड़ा सा आप लोगों को बताते जाएं। इट इज राइट नाउ इंचिंग टूवर्ड्स दैट ब्रेक एट 10:20 दैट वील बी हिटिंग, लेकिन उसके बाद ना कुछ नए से

0: 26 लेडीज एंड जेंटलमैन, सोचा कि ये बात थोड़ा सा आप लोगों को बताते जाएं. इट इज राइट नाउ इंचिंग टुवर्ड्स दैट ब्रेक एट 10:20 दैट वी विल बी हिटिंग. लेकिन उसके बाद ना कुछ नए से गाने आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, नए एक्चुअली मेरे लिए क्योंकि मैंने पहले नहीं सुने हैं ये गाने, और कुछ कुछ कभी कभी मैं इसे लेकर आती हूँ सो दैट यू वाइडन योर डेटा बेस विथ अस. यू नो म्यूजिक इतना बड़ा समंदर है, उनमें से हम कई पॉपुलर गाने बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन या टाइम टू टाइम वी शुड यू नो लिसन टू समथिंग दैट वी हैवंट हर्ड बिफोर एंड सी इफ वी लाइक इट एंड इफ वी वांट टू ऐड इट इन आवर पर्सनल प्लेलिस्ट. कीप लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू, प्लेंटी टू टॉक अबाउट राइट हियर.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route, rerouting.
1: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
2: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
1: क्यों?
2: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
1: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
2: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
4: बेटा 95% आए?
5: हाँ मम्मी.
4: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
6: मेरा?
4: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
6: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल. फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
9: Ritesh, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
10: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
9: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
10: वेट, व्हाट?
7: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
7: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ी, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
14: इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
15: मैं हीरो.
9: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
16: उमर ख्वाजा.
17: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
18: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.
0: And you are tuned into Financial Radio 104.9 FM और ये है गपशप गली with me too. इस गपशप में ना ये गाना शामिल करना चाहती हूँ, एंड प्लीज टेल मी फॉर द पीपल हु हैव वॉच्ड द मूवी कॉकटेल 2, ये गाना एल्बम में है कि नहीं. मुझे मतलब 99% आई एम श्योर कि ये गाना एल्बम में नहीं है, बट यू नो ऑन यूट्यूब दिस सॉन्ग इज बींग सॉर्ट ऑफ शुड आई से प्रमोटेड और पुट अप और अपलोडेड लेट्स से कि ये कॉकटेल 2 का गाना है. ये आप मुझे बताओ कि है कि नहीं. और मैं आपको ये भी सुनवाना चाहती हूँ कि इस गाने को इतने सारे व्यूज़ मिल चुके हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट कपल ऑफ मिलियन व्यूज़ हियर.

इस गाने को ऐसे ही मिल गया, क्योंकि ये कॉकटेल 2 के फिल्म के नाम से अपलोड किया गया है. सो यस, दैट इज़ द मैजिक ऑफ कॉकटेल 2, लेडीज एंड जेंटलमैन. और कुछ कुछ लोग ना इसका बड़ा फ़ायदा भी उठाते हैं. सो टेल मी, एम आई राइट अबाउट इट? कॉकटेल 2, लेडीज एंड जेंटलमैन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फाइनेशिया फिल्म, जिसमें कमाल के गाने हैं और प्रीतम का म्यूजिक है आफ्टर ऑल. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू गो एंड वॉच इट एट योर नियरेस्ट थिएटर्स. आई विल एज वेल. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

Cocktail 2 स्टारिंग शाहिद कपूर, प्रीति सैनन एंड ऑल्सो रश्मिका मंदाना. और इस फिल्म का ये गाना ना, जब मैंने पहली बार सुना था, मुझे लगा दिस इज़ एन AI सॉन्ग, इट इज़ जस्ट टू परफेक्ट टू बी ट्रू. और मैंने अज्यूम किया कि ये यू नो AI सॉन्ग है. एंड देन आई कम टू नो फ्रॉम दिस लिसनर ऑफ माइंड, जिन्होंने कहा कि नहीं, ये वाकई में एक गाना है. और मैं जो 99% श्योर थी कि ये नहीं है, वो मेरा आज चूर चूर हो गया. बट आई एम glad that this is a song first of all from the movie, and an original song from the movie, and it is Pritam at the helm of it, and Arijit Singh ki aawaz hai is gaane mein. Amitabh Bhattacharya ke lyrics hai. Let's not undermine such people jo you know AI ko takkar dene ki koshish kar rahe hain, which is absolutely sort of impossible also. At the same time, people have talked about the feeling part of songs, you know. ये नहीं आ सकती है किसी AI वगैरह से, ये तो भाई एक human touch से ही आ सकता है, right? एक आपको AI का गाना सुनवाना चाहती हूँ, और ये गाना है 500 Days of Summer Bollywood, और इसमें आमिर खान और दिव्या भारती को दिखाया गया है. They have never worked together ever in any film, and this is a creation of a fan, I guess, of Divya Bharti's and also Aamir Khan, ki jo kabhi nahi hua unhone isko AI ke through imagine kiya hai, and this is the song, and this is definitely an AI song.

And it is, ladies and gentlemen, Funnation Radio 104.9 FM. AI song जो आपने सुना, इसका जो वीडियो भी है, that's an AI creation, as I was telling you. 500 Days of Summer, that is what it is titled, featuring Aamir Khan and Divya Bharti, which hasn't been ever seen, लेकिन इस AI के जरिए आप वो भी imagine कर सकते हो. लेकिन वक्त है कि हम original गाने पर जाएं यार, क्योंकि हमारे artists जो हैं, हमारे जो singers, songwriter and जो composers हैं, वो कमाल के हैं. यार, we cannot overlook the fact that feelings तो भाई उन्हीं से आती है. लेकिन feeling फिलहाल जो मेरी है ना, वो ये है कि तैयार हो जाओ यार, आने वाले दिनों में जो गर्मी है उनके लिए तैयार हो जाओ. As if we are not prepared, as if people living in Dallas don't know about it. हमारे जो जून का महीना चल रहा है और ख़त्म हो रहा है, almost half the year mark that we are going to end with the end of this month. तो इसमें कोई शक तो नहीं है कि भाई गर्मी होगी. 90s this afternoon that we are going to climb into, और हमारी heat index value, it is going to be around 102 to 103. बहुत सारी धूप हमें मिलेगी और बहुत सारी हवा भी, यानी कि it is going to be gusty and thanks to that, उसके कारण मेरे डॉग के साथ वॉक करना मेरा आसान हो गया है. Although we go at 9 PM, close to around 9 PM that we go, लेकिन वो हवा चल रही होती है इसीलिए अच्छा लगता है. So yes, sunny, hot and windy weather is what you can continue to expect this weekend as well. हमारे जो highs होंगे upper 90s Saturday और Sunday को रहने वाले हैं, और थोड़ा सा और gusty होने वाला है, थोड़ा सा और windy होने वाला है. And the summer sizzle sticks around next week. हमारे high temperatures तब upper 90s और close to 100 degrees in some places. It will actually see the triple digits and abundant sunshine that is in store for us next week, ladies and gentlemen. Aur abhi filhal hamara high hai around 86 degrees. Now, that being said, let's go to ye feel wala gana.

0: A gem of a song and that is what we are playing for all of you. जो हमें पसंद है और जो आपको पसंद है 9722355555 number in the studio and that brings my attention to the real gems that you can find at PMJ Jewels. I'm talking about diamond. I'm talking about gold. I'm talking about their beautiful bridal collection that you can check out and much more. 60 साल का experience है in this उनकी जो एक्सपर्टीज है इस फील्ड में, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने लोगों तक, कितने जनरेशन्स तक पहुंचे हैं. तो अगर आपने कभी नहीं इनकी ज्वेलरी चेकआउट करने का आपको मौका मिला है, दिस इज़ द 45th स्टोर दैट हैज ओपन्ड इन डैलस. डैलस इज़ द चोजन वेन्यू एंड वी आर रियली फॉर्चुनेट, क्योंकि जो उनके ज्वेलरी लगातार खरीदते आए हैं वो जानते हैं कि दिस इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी एंड डिज़ाइंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो येस, गेट इन टच विद देम, प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा Ghatamaneni. PMG is a name trusted by generations that you must remember. PMJ Jewels in Frisco on Main Street aapko mil jayega, zarur jaye. And yes, let us know how you feel about the places that we talk about. Hame feedbacks ki intezar rehti hai aap logo se, so that we can find out from our listeners ki कौन सी जगह उन्हें अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं अच्छी लग रही है. एंड दैट गोज़ फॉर आवर शोज़ ऑल्सो, कि उनको हमारे शोज़ में, आपको हमारे शोज़ में क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है. फीडबैक इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग, समटाइम्स वी मिस आउट टू गिव.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Is shahar ko hua kya? Kahin pe अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
7: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
8: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी.
9: माय टाइम इक्विरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीएस सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com और कॉल सुधीर पाई एट 9723302771 और ईमेल wealth@mytimeequity.com टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टुडे. टॉक टू सुधीर पाई अबाउट 2025 डिजिटल एसेट और क्रिप्टो.
10: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
11: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
12: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
11: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
2: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
13: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
14: tracks that put you on the right track.
0: And this is a track that I've always enjoyed playing for all of you. This is Gapshap Gali with Me Too, celebrating Arjun Kapoor's birthday right here. Film ka naam Ishak Zade.

एंड दैट्स अर्जुन कपूर लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनका आज 40th बर्थडे है. एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले वन मोर सॉन्ग फीचर्ड ऑन हिम. सिंपल सी बात है कि अर्जुन कपूर को मैं एक्चुअली पसंद करती हूँ एज एन एक्टर. ही हैज़ बीन क्वाइट रिटन ऑफ, मुझे लगता है कि कई लोगों ने ये अपना वर्डिक्ट दे दिया है, कई ट्रोलिंग होती है उनके ऊपर अबाउट हिज एक्टिंग एंड वॉट नॉट. मैं कौन सी एक फिल्म का देख रही थी कि विच एक्चुअली वॉज अ डड एट द बॉक्स ऑफिस, और जो हीरो थे उनकी एक्टिंग उस फिल्म में बहुत ही ख़राब थी. मुझे फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है, बट आई रिमेंबर वन ऑफ द क्रिटिक्स रिव्यू रेड समथिंग लाइक यू नो कि अर्जुन कपूर से भी ख़राब एक्टिंग की है, इस तरह का कुछ कंपेरिजन किया था. आई फील्स दैट दिस इज़ सो, कितना ज़्यादा टफ होता है इन एक्टर्स के लिए टू गो अबाउट रीडिंग दीज रिव्यूज़. एंड यू नो कितना एक होता है ना कि जब शायद उनको इतनी फिल्म मिल भी नहीं रही हैं अभी, तो उसमें और कितना बुरा लगता होगा. आई एम जस्ट सेइंग यू नो. तो इसी बात पर अर्जुन कपूर के लिए आई वॉन्ट टू प्ले अनादर सॉन्ग, विशिंग हिम ए वेरी हैप्पी बर्थडे एंड टू एवरीबडी सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टूडे. अर्जुन कपूर की ना कुछ फिल्म बहुत ही स्टैंड आउट रही हैं, जिनमें से ऑफकोर्स हिज डेब्यू फिल्म विच इज़ इशक ज़ादे, उसके अलावा इट इज़ गुंडे, इट इज़ की एंड का विद करीना कपूर, इट इज़ ऑल्सो विच आर द फिल्म कैन यू रिमेंबर. ये दोनों कुछ फिल्म्स याद आई मुझे, और ये दोनों ही फिल्म अपने आप में बहुत अलग अलग थी, लेकिन सबसे अलग फिल्म उनकी जो थी दैट वाज दिबाकर बैनर्जी संदीप और पिंकी फरार. आई फील कि उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका डायलेक्ट, वो सारा कुछ काफ़ी रिस्ट्रेंड था एंड इट वाज एवरीथिंग दैट ही वाजंट इन हिज फर्स्ट फिल्म, जिसमें उनका एक जो रोल था वो काफ़ी अग्रेसिव, एक वल्नरेबल कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया था, एक रॉ एनर्जी थी फिल्म में. और इसीलिए मुझे लगता है कि संदीप और पिंकी फरार, जो कि कोविड के टाइम पे आया था और ज़्यादा लोगों तक ये फिल्म पहुंची नहीं फॉर द रीज़न कि मैंने कहा ना कि अर्जुन कपूर को कई लोग राइट ऑफ पहले ही कर देते हैं. एनी वेज, अ फिल्म दैट वी ऑल यूनानिमसली लव्ड ऑपोजिट आलिया भट्ट, टू स्टेट्स.

Arjun Kapoor's birthday celebration to another Kapoor that we are going to celebrate, another underrated actor, and that is Kunal Kapoor, ladies and gentlemen. Matlab, looks shandar the, acting bhi shandar hai, lekin mauka phir bhi nahi mila. This is actually, kya kehna chahiye, destiny bhi hoti hai actors ki. सही जगह पे भी होना जरूरी होता है ना, केवल मेहनत करने से या केवल यू नो टैलेंट होने से नहीं होता, ये सभी के लिए होता है कि भाई सही जगह पे सही वक्त पे आप अगर सही जगह पे हो तो क्या होता है, सही जगह पे सही वक्त पे, मैंने पूरा कंफ्यूज करके रख दिया ना, सही वक्त पे सही जगह पे अगर आप होते हो तो ही डेस्टिनी चमकती है आपकी.

वेलकम बैक. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. ये है गपशप गली विथ मी टू. हमारी बातचीत चल रही थी डॉक्टर अनंत चेतना के साथ इन द लास्ट सेगमेंट फ्रॉम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर दैट द नंबर एंड द वेबसाइट इज ऑलवेज विथ अस राइट हियर. इफ यू नीड दैट यू कैन गिव अस अ कॉल. इट्स पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम एंड द नंबर टू कॉल इज 214-666-6259. बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके. और जो एक काम था ना उनकी आवाज़ में, दैट इज़ वॉट यू आर सीकिंग वेन यू गो टू सी अ डॉक्टर, राइट? This is Gapshap Gali with me too.

चलना ओ सनम। हमारे साथ चलते चलें, दिस इज गपशप गली विथ मीटू। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ट्रैफिक अपडेट लेकर आना चाहती हूँ, ब्रॉट टू यू बाय अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम। अगर आप किसी कार एक्सीडेंट में या स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट में या वर्क प्लेस इंजरी के कारण यू नो यू हैव टेकन अ हिट एंड यू थिंक यू डिजर्व अ कॉम्पनसेशन, ये कॉम्पनसेशन आपको अटर्नी उमर ख्वाजा दिला सकते हैं अगर आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं। अगर आप उनको उनके साथ सारी अपनी डिटेल शेयर करते हैं, दे विल डेफिनेटली फाइंड अ वे टू हेल्प यू एंड स्टैंड फॉर यू। क्योंकि ये इतना टीडियस काम होता है कि अक्सर हम ना छोड़ देते हैं कि ठीक है जो हुआ सो हुआ करके आगे बढ़ जाते हैं, बट यू नो यू शुडन्ट, बिकॉज इफ यू डिजर्व अ कॉम्पनसेशन, यू डिजर्व अ कॉम्पनसेशन एंड दे मेक दिस प्रॉमिस टू यू, यू डोंट हैव टू पे अंटिल यू विन। दैट इज दैट कम्स फ्रॉम अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम। ए फ्री कंसल्टेशन फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू गिव देम अ कॉल एट 4693005046। अटर्नी उमर .com इज द वेबसाइट। एंड उनके तरफ से ये ट्रैफिक अपडेट, तीन मेजर कोलिजन्स के बारे में बताने वाली हूँ। I-30 Haskell Avenue westbound mein the right shoulder is blocked, you must know that. Aur ek aur collision jo I-35 at loop 288 north, the southbound is also impacted by an accident, and it is the left two lanes, actually the two lanes that are they are blocked. So you can imagine the backup that there is. If there is a detour that you can take, please do ahead of time. And also there is another major collision at I-30 at Blackland Road eastbound, and isme jo rightmost lane hai wo बंद है और इसीलिए ट्रैफिक बैकअप हो सकता है। तो ये कुछ इंसिडेंसेस हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी। एंड इसके अलावा एक मेंटेनेंस का माइनर एपिसोड जो आपको मिल सकता है इफ़ यू आर ड्राइविंग दैट वे, इट्स लूप 12 एट जेफरसन बुलेवार्ड साउथ बाउंड, एंड थोड़ा सा ट्रैफिक हो सकता है कि इम्पैक्ट करेगा। ओवरऑल इट लुक्स ओके एंड दैट्स योर ट्रैफिक अपडेट फॉर यू, ब्रॉट टू यू बाय अटर्नी उमर ख्वाजा and his team. Thank you once again for tuning in. Ek achha sa naya sa gana lagati hu aap logon ke liye. Just 3 days back this song released, Akhil Sachdev is the voice in this one.

And that, ladies and gentlemen, is Akhil Sachdev. Just in case you like that song, the title of the track is Tu Milia. You are listening to Fanisha Radio 104.9 FM. और यहाँ पे मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ना हम बात कर रहे थे अबाउट गूगल एंड समटाइम्स हाउ वी रिलाय सो मच ऑन गूगल इन्फॉर्मेशन, राइट? और ऐसे में मैं ना कुछ जानना चाहती हूँ, क्योंकि थिंक बैक टू द लेट 90s, गूगल वॉज जस्ट अ क्लीन वाइट वेब पेज विद अ ब्लिंकिंग कर्सर, मानते हैं कि नहीं? तब लोग इंटरनेट पे नए नए आए थे और पता है उनका गूगल से सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ करता था? आई कैन जनरलाइज इट, यू नो वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू गूगल्स ओन ऑफिशियल हिस्टोरिकल आर्काइव्स, द वेरी फर्स्ट क्वेरीज वर्न्ट डी फिलोसफिकल रिडल्स. जो लोग थे वो लिटरली टेस्ट करना चाहते थे कि ये चलता भी है कि नहीं. तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि यू नो, इज गूगल डाउन या इज याहू अप? याहू ये सिर्फ या तो टाइप कर देंगे. बेसिकली दे वर रैंडमली टाइपिंग इन URLs जस्ट टू सी इफ द सर्च इंजन वुड टेक देम देयर. सिंपल सी बात है. आप सोच सकते हैं कि एक सर्च इंजन पे दूसरा सर्च इंजन ढूंढना कितना फैसिनेटिंग रहता होगा लोगों के लिए, कि देखते हैं कि जाता है कि नहीं उस URL पे, यू नो. बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2026 एंड आवर सर्च बिहेवियर हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड. अब हम गूगल को चेक नहीं करते, गूगल से अपनी पूरी जिंदगी का जो है नुस्खा चलाते हैं. रेसिपीज फॉर आर लाइफ दैट वी आस्क, मतलब डीप सवाल भी पूछते हैं, जो कि आप अपने फ्रेंड से बात करोगे या फैमिली से वो सवाल तक पूछते हैं, यू नो, दोज काइंड ऑफ चेंजेस दैट वी आर सीइंग. तो मुझे कुछ पूछना है आप लोगों से, और वो ये पूछना है कि आपने आखिरी बार गूगल को क्या पूछा था. एंड बिना फिल्टर के प्लीज बताइए, इफ दैट इज समथिंग दैट यू कैन शेयर ऑन एयर जरूर बताइएगा हमें. विल take few calls if we can, or else give me a call right now and we will definitely, you know, write your answers, for the reason ki main aapko ek inaam dene wali hu, aur ye inaam hai San Idli restaurant ki taraf se. This giveaway dosa of your choice plus one filter coffee that will go to two of our lovely listeners here. To bas itna batana hai ki aapke Google pe aapne aakhri baar kya search kiya tha. That's all you have to say, very, very honestly. The two interesting answers will get the award and the reward from San Idli restaurant. 972-235-5555. That's the number in the studio. Chaliye, main lene wali hoon calls. Aap in the meantime enjoy karo this next track right here. You are listening to Gapshap Gali with me too.

0: All right, listeners, once again, this is for San Idli restaurant that you all are playing for. And it is a simple question, or wo question ye tha ki Google mein aapne aakhri baar kya sawal pucha tha. If it is something that you can come on air and share with us, please go ahead. Kuch jawab mujhe mile hain aur ek jawab ke intezaar mein aap ho sakte hain kyunki main ek call on air lena chahti hu randomly. You are live on air. Fayyad, thank you very much for holding the line. Can you hear me, Fayyad?
1: Yes, I can hear you. Yeah. Can you hear me?
0: I can hear you very, very well. So, Fayyad, he told me about this store. So, you go ahead and tell us about the store. Please don't name the store. That will be just between you and me.
1: Okay. Okay. Yeah. I was searching about furniture financing option because I'm looking for new furniture for my house.
0: Awesome.
1: So, I was.
0: And did you get your? Did you get the answer?
1: I did get.
0: Yay, Google Zindabad. Thank you, Fayyad. Thank you, Fayyad.
1: Thank you so much.
0: And yes, ladies and gentlemen, more than ever than I can say that we know how to make the right search. And we know not to rely on one single answer if it is to do with us, you know, our health, our personal questions. Hum do char jagah pe reliable sources se hum pata karne ki koshish karte hain. Lekin wo sources tak bhi pahunchane ka kaam Google ka hota hai. Thank you, Google, for doing that. And I've gotten few answers. One was from Neeral. She said jury duty unki lagi thi, lekin fir unko drop kar diya gaya tha. So she was very curious to find out ki uska hua kya. So Neeral, definitely you are one of my winners. Please give me a call back. And I have this dosa of your choice plus one filter coffee San Idli restaurant ki taraf se. Zarur call kijiyega 972-235-5555 pe, and this will be yours. Fir Sabha ने बताया कि वो रेस्टोरेंट एक जाना चाह रही थी और उसका एड्रेस उन्होंने पता किया. दिस इज वन थिंग वी ऑल यूज इट फॉर, राइट. फिर आरके ने बताया कि उन्होंने अपने बिजनेस के रिव्यूज देखने चाहे और उन्होंने देखा कि मैंने पूछा कि भाई कैसा लगा उनको अपना, कैसा है उनके बिजनेस का रिव्यू. आई डोंट नो अबाउट द बिजनेस बट ही सेड 740 आई थिंक ही सेड 745 स्टार रिव्यूज. तो फिर 5 स्टार जगह की तरफ से आपके लिए है एक डोसा आपके पसंद का और साथ में फिल्टर कॉफी. एंजॉय दोस 5 स्टार रिव्यूज फॉर द बिजनेस दैट यू हैव गॉटन. गिव मी अ कॉल बैक RK, and the prize is yours from San Idli restaurant. For all the other listeners, मैं आपको बताते चलूँ यार, यहाँ पे ना मस्त क्रिस्पी डोसा और बहुत बढ़िया इडली, मुँह में पानी आ रहा है मेरे लिटरली. एंड शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी आपको यहीं पे मिलेगी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज, दे हैव इट ऑल. जैन फ्रेंडली फूड ऑप्शंस भी हैं एट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट. ये हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन पे है. ज़रूर याद रखिएगा और याद रखिएगा कि भाई नीरल और आरके को मुझे कॉल बैक करना है टू गेट देयर इन्फो टू गिव अवे दिस फैंटास्टिक गिव अवे फ्रॉम सैन इडली रेस्टोरेंट. ये है गपशप गली विथ मी टू.

आपने आखिरी बार गूगल पे क्या सर्च लगाया था, क्या सर्च मारा था, यही तो हम जानना चाहते थे। और हमारे दो विनर्स हमें मिल गए, एक की मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली है, दूसरे हमारे विनर के को मैंने होल्ड पे रखा है। तो जल्दी से वापस जाना चाहती हूँ, बस इतना बताना चाहती हूँ कि मैंने पता है आखिरी बार क्या सवाल पूछा था गूगल से। मैंने पूछा था व्हेन इज़ द अमेज़न प्राइम डे कमिंग, एंड दैट्स द आंसर दैट आई गॉट इज कि भाई आज आखिरी दिन है, इस्तेमाल कर लो, नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी तुम्हारे हाथ से।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
7: Calculating route, rerouting.
6: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
7: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
6: Kyun?
7: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
6: Achha, to seedha wahi le chalo.
8: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
7: Your new destination has arrived.
9: Documents ya parcel bhejni hai?
6: हाँ,
9: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ,
9: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ।
9: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
10: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
11: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
13: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
14: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
15: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
16: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
15: नहीं।
16: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
15: नहीं।
16: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
15: वो भी नहीं।
16: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
17: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
18: AG FinTax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
19: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
20: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
21: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
22: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
21: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
0: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338 myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender. We got-

लिसन, यूएस इमिग्रेशन जो है ना, इट इज़ ऑफन सब्जेक्ट टू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द पोलिटिकल क्लाइमेट, और इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं एंड दैट कैन बी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, इंक्लूडिंग ट्रेंड्स इन ग्लोबल बिजनेस, करेक्ट? और ऐसे में सीमा मेहता लॉ फर्म आपकी मदद कर सकते हैं. दे प्रोवाइड स्किल्ड रिप्रेजेंटेशन टू इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स विद देयर इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन लीगल नीड्स, एंड दे आर एक्सपीरियंस एट हैंडलिंग हाईली कॉम्प्लेक्स वर्क. तो आप बेझिझक बिंदास सीमा मेहता लॉ फर्म .com पे जाएं. दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अप देयर. और नंबर मैं बता देती हूँ आपको, इट इज 214-432-2499 दैट यू शुड कॉल. और इसके अलावा आप ये भी जान लें कि अगर आपको EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम के बारे में कुछ पता करना है, या पर्म लेबर सर्टिफिकेशन, या यू नो एनीथिंग एल्स दैट इज़ हवरिंग इन योर माइंड, यू कैन ईमेल देम एट info@seemamehtalawfirm.com. ये याद रहना चाहिए. एंड सबसे ऊपर द वेबसाइट seemamehtalawfirm.com विच हैज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन फॉर यू. हमारा इन्फॉर्मेशन बस इतना जान लें कि मैं हूँ मीठू और ये है गपशप गली, और ये है फन एशिया रेडियो, जिस प्लेटफॉर्म पे हम सारे मिलते हैं. ना सिर्फ म्यूजिक लेकिन हमारी बहुत सारी और बातचीत होती है, जिसमें फीफा इज द सेगमेंट दैट आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू अंटिल 19th of July, एंड इट इज दिस लास्ट सेगमेंट एंटायरली डेडिकेटेड टू इट. और उस डेडिकेशन के पहले फिल इन द ब्लैंक, ये गाना मैं लगा रही हूँ, इसका जो दूसरी जो लाइन है ना, मैं उसको म्यूजिक से दबाने वाली हूँ. यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक, क्योंकि नियॉन कैक्टस की तरफ से मेरे पास आपके लिए एक शानदार गिव अवे है, $20 गिफ्ट कार्ड, डाइन इन गिफ्ट कार्ड दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस प्लेस वेयर मेक्सिकन फ्यूजन मीट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस, एंड देन ऑफकोर्स द एम्बियंस दैट वन कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इफ यू हैव बीन टू दैट प्लेस. हियर वी गो, ये है वो गाना और आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, द सेकंड लाइन प्रीसाइजली.

9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. यू हैव टू गिव मी द सेकंड लाइन इन द सॉन्ग. एक बार फिर सुन लीजिए.

0: Asia Radio, you are live on air.
1: Hi, I want to answer that.
0: Yes, tell me, what's the second line?
1: उड़े जैसे परिंदे गगन गगन.
0: बिल्कुल सही जवाब. और इस सही जवाब के लिए आपको मिलता है नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का गिफ्ट कार्ड, डाइनिंग गिफ्ट कार्ड. दैट इट इज, क्या नाम है सर आपका?
1: निक.
0: थैंक यू वेरी मच. प्लीज होल्ड द लाइन और सारी डिटेल्स लेते हैं. और मैं आपको बताऊं, हमारे एक लिसनर ने पिछले सेगमेंट में ही कहा कि नियॉन कैक्टस, ही हैड बीन देयर ऑन फादर्स डे एंड ही वाज हाईली इंप्रेस्ड विद द फूड. सो यू आर इन फॉर अ वेरी गुड सरप्राइज देयर इफ यू हैवंट बीन देयर ऑलरेडी. दिस इज वेरी स्पेशली फॉर यू निक. होल्ड द लाइन फॉर मी. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. एंड दैट इज इंडीड उड़े जैसे परिंदे गगन गगन. लेट्स गेट इट फॉर यू एंटायरली नाउ.

इसके बाद फेल्ट लाइक प्लेइंग गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी गोरी, लेकिन याद आया कि फिल्म तो सेम ही है. मैं हूं ना, मैं ऐसे थोड़ी ना दिखा सकती हूँ कि भाई हम आर्टिस्ट इतने आलसी हैं कि एक ही फिल्म से बैक टू बैक दो गाने लगा दिए. नहीं करने वाली हूँ. लेकिन शाहरुख खान का ही एक और बढ़िया सा गाना आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ. एंड दिस इज फीफा सेगमेंट, तो अपडेट्स एंड ट्रिविया भी लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग बिकॉज यू नो यू नीड टू ग्रैब योर कैलकुलेटर्स बिकॉज दिस 48 टीम वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज इज टर्निंग इन टू ए टोटल मैथमेटिकल थ्रिलर. जो टॉप टू टीम्स हैं 12 ग्रुप्स के, वो ऑटोमेटिकली एडवांस कर जाते हैं राउंड ऑफ 32 में. यू ऑल नो दैट, लीविंग एवरी वन एल्स टू फाइट टूथ एंड नेल फॉर द दोज 8 वाइल्ड कार्ड स्लॉट्स रिजर्व फॉर द बेस्ट थर्ड प्लेस फिनिशर्स. एंड विद गोल डिफरेंस एक्टिंग एज द अल्टीमेट टाई ब्रेकर, ये ना लिटरली जो हो जाता है कि हर किक मैटर करता है यू नो. लेकिन कल जून 25 के मैचेस के बाद अब पूरा पिक्चर जो है काफी क्लियर होता नजर आ रहा है हमें. लेट्स लुक एट हु इज सेफली थ्रू एंड हु इज पैकिंग द बैग्स एंड द वाइल्ड रिसीट्स फ्रॉम यस्टरडे दैट वी नीड टू टॉक अबाउट. काफी एक्शन था कल के गेम्स में. वेल एलीट क्लब के बारे में बात कर लेते हैं. द टीम्स दैट हैव officially punched their ticket into the round of 32 knockout phase so far. The group A se Mexico or South Africa hai, group B se Switzerland and Canada, group C se Brazil and Morocco, group D se it is US, ladies and gentlemen, along with Paraguay, that I need to tell you. And of course US ki agar hum baat kar rahe hain to US ka game hum jante hain ki kal kya raha, kyunki it didn't matter ki wo jeet rahe hain ya haar rahe hain kyunki wo automatically top tier mein थे अपने ग्रुप में, तो इसीलिए उनका एडवांस करना तो ऑब्वियसली 100% श्योर था. और इसीलिए बैकअप्स यू नो प्लेड, द पीपल हु प्लेड देयर प्लेड वेल बट दे couldn't still win the game against Turkey. They lost to Turkey 3-2, and that was the end of the Group D match. And USA has secured their position along with Paraguay, that you should know. Group E mein Ecuador and Ivory Coast ne apni jagah banayi hai, and Ecuador, who pulled off an absolute shocker by beating Germany 2-1, was amazing to watch. And of course you know, ek jo kal ka madness dekha जब आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को बीट किया और अपनी जगह बनाई उस एलीट क्लब ऑफ 32 में. इसके अलावा ऑफ कोर्स फ्रॉम ग्रुप एफ, नेदरलैंड्स, जापान एंड स्वीडन हु ऑल लॉक डाउन देयर स्पॉट्स यस्टरडे. और आज के गेम्स जो हैं दैट विल ब्रिंग द एब्सोल्यूट फाइनल मैच डे ड्रामा फॉर ग्रुप जी, एच एंड आई. एंड यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि जी, एच एंड आई का आज होने वाला है और कल जे, के एंड एल ग्रुप्स का होने वाला है. एंड उसके बाद हमारे जो हैं राउंड ऑफ 32 नॉकआउट ग्रिड को हम पूरी तरह से लॉक कर देंगे और मैचेस शुरू होंगी संडे से फॉर द best of the best in the in that particular group, in those 32 teams that have qualified for the next round. On the flip side, the teams that are mathematically eliminated and heading home, the heartbreak is real for Qatar and Haiti and Tunisia, Jordan, Panama and Turkey as well. This is the quick update for all of you. A little bit of trivia that I'm going to bring right after this song.

दिस इज फीफा सेगमेंट, तो कुछ अपडेट्स के बियॉन्ड भी बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट फॉर्च्यून इट टेक्स टू एक्सपीरियंस दिस वर्ल्ड कप रियलिटी. तो क्या है ना कि ये जो स्काई हाई टिकट प्राइसेस हैं, इनसेन पार्किंग फीस है, क्रेजी एक्सपेंसिव कंसेशंस हैं, तो इन सब में आपका जो वॉलेट होता है ना वो कम्प्लीटली ख़त्म हो सकता है. और इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोग पागल हैं इसके पीछे और वॉलेट खाली करने को तैयार भी हैं. एंड दैट्स नथिंग कंपेयर टू द बिलियंस ऑफ टैक्स पेयर डॉलर्स होस्ट कंट्रीज पंप इनटू अपग्रेडिंग स्टेडियम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो गपशप गली पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि इतने बड़े खर्चे के बाद जब आप देखते हो कि फीफा पॉकेट्स द एब्सोल्यूट लाइन शेयर ऑफ द मनी, यानी कि सारा डायरेक्ट प्रॉफिट फीफा के पास ही चला जाता है, तो आप सोचने लगते हो यार ये चक्कर क्या है. Here is a breakdown for all of you. So to keep its non-profit status alive, FIFA does route a massive chunk of that cash right back into the sport. Let's look at the actual receipts for a change. Humko to nahi pata hoti, humko lagta hai yaar itna itna paisa and all of that. सबसे पहले 48 कंपीटिंग कंट्रीज जो हैं उनके लिए 871 मिलियन डॉलर्स का प्राइस मनी अलग रख दिया जाता है, विद द फाइनल चैंपियन नेशन टेकिंग होम ए कूल 50 मिलियन डॉलर्स का वाउचर. ऑन टॉप ऑफ दैट फीफा 355 मिलियन डॉलर्स खर्च करता है दुनिया भर के प्रोफेशनल क्लब्स पे से जो है वो जो रिलीज करना होता है फेवरेट प्लेयर्स फॉर क्वालिफायर्स एंड द मेन टूर्नामेंट उसके पीछे लगाता है. ऑल्सो उनका एक फीफा फॉरवर्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है जहां वो अप्रॉक्सीमेटली 2.7 बिलियन डॉलर्स खर्च करते हैं. दिस मैसिव फंड गोज टूवर्ड्स बिल्डिंग स्टेडियम ग्रास रूट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजिंग ऑपरेशन अक्रॉस ऑल 211 मेंबर एसोसिएशन ग्लोबली. बट मेक्स नो सेंस रियली कि मतलब आप सोच के देखो कि इतने बिलियन डॉलर्स बनने के बावजूद भी फीफा मजे में है और उनका काम एकदम जो है चकाचक चल रहा है. सारी पेमेंट्स के बाद भी उनके पास 6 बिलियन डॉलर्स से ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट्स रिजर्व में उनके पास पड़े होते हैं. सो वाइल द मनी डज हेल्प ग्रो सॉकर वर्ल्ड वाइड, फीफाज ओन बैंक अकाउंट लेट्स से स्टेज इनक्रेडिबली हेल्दी, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो अगर सारा प्रॉफिट, ये मतलब सोचने वाली बात है कि अगर

सारा प्रॉफिट फीफा को जा रहा है, तो इसमें होस्ट कंट्रीज का क्या फायदा? विल टेल यू राइट आफ्टर दिस सॉन्ग इफ आई हैव टाइम. फिलहाल चलें इस गाने पर. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: अगर शिकायत हो आपको मुझसे कि मैं मेरी बात आज पूरी हो नहीं पाई, द फैक्ट दैट कि ये फीफा के पास पूरा जो है पैसा जाता है, वो ब्रॉडकास्टिंग का, टिकट का, सब कुछ अगर फीफा के बैंक अकाउंट में जाता है, देन द अल्टीमेट क्वेश्चन अराइजेस कि बॉस फिर होस्ट करने वाले जो कंट्रीज हैं उनको मिलता क्या है. वेल, बहुत कुछ मिलता है, और वो क्या मिलता है उसको बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास गूगल है. गूगल के बारे में इतनी बातें की हैं हमने, तो आप गूगल कर लीजिए या तो फिर मंडे तक का शो का इंतजार कीजिए, बिकॉज लास्ट सेगमेंट इज ऑलवेज डेडिकेटेड टू फीफा एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट दैट द कंट्रीज होस्ट एंड हाउ दे आर बेनिफिटेड बाय इट. वेल, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू गपशप गली विथ मी टू. चलू मैं.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली.
4: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
3: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
4: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
2: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स. पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट, और हर बच्चे के लिए कॉम्पिटिटिव एज. ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस. किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
5: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd to 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल. फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्रे परचेस, एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oora can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
8: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
11: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
12: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी.
13: हे डैलस, स्टिल परफॉर्मिंग ओनली फॉर योर बाथरूम मिरर और द फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsor sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

12:42 by the studio clock. You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. Namaste, Sasriyakal, Adab, hello, Dallas, and a very happy Friday. This is Ramita, और अगले दो घंटे हम सिर्फ गाने नहीं सुनने वाले, हम officially weekend का countdown शुरू करने वाले हैं. वैसे ऑफिस में लोग जो लोग अभी भी लैपटॉप के सामने बैठे हैं, सच सच बताना, काम कर तो रहे हो आप, बट आपका सिर्फ आपकी सिर्फ आंखें ना आपके एक्सेल शीट में है, दिमाग आपका ऑलरेडी वीकेंड में जा ही चुका है. यार ये फ्राइडे होता ही ऐसे, ऑलमोस्ट लंच टाइम है, लंच आर है, ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा लेट बैक ऑफिस में दिख तो रहे हैं, तो ऐसे ही एक्साइटमेंट फॉर द वीकेंड. और जो लोग ड्राइव कर रहे हो, घर जाने की एक्साइटमेंट अलग सा है. आज का शो एकदम हल्का फुल्का होगा, जैसे एवरी फ्राइडे हमारा मूड रहता है, यू नो, वीकेंड प्लानिंग, फनी कन्फेशंस, रिलेटेबल मोमेंट्स और बहुत सारा म्यूजिक. तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, वॉल्यूम थोड़ा और ज्यादा सा बढ़ा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आफ्टरनून अड्डा.

8 minutes past 1 o'clock. You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. Main hu Rumita, and this afternoon, Adda is a Friday. Because, yes, guys, it's almost half day gone. I mean, ये जो ऑफिस का जो चक्कर है ना फ्राइडेज को, 12:30 बजे यानी कि मेरे शो के टाइम अराउंड ही वो खत्म हो रहा है, वो सीरियसनेस आपके काम का. सच बता रही हूँ या नहीं? और अगर आप घर से मुझे सुन रहे हो तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो है ही कि शाम से आप क्या प्लान करने वाले हो अपने वीकेंड को यादगार बनाने के लिए. वैसे एक गेम खेल सकते हैं हम, यू नो, आपके लिए ये वीकेंड कब शुरू होता है. मतलब यू कैन कंप्लीट द सेंटेंस लाइक मेरे लिए वीकेंड यानी कि मेरा वीकेंड ऑफिशियली तब शुरू होता है जब, फॉर एग्जाम्पल, जब बॉस आपको गुड वीकेंड बोल दे, यानी कि हैव अ गुड वीकेंड ऐसा कुछ बोल दे, या घर की चाय मिल जाए हमें, या हमें सिर्फ अलार्म ऑफ करके हम अपनी नींद पूरी कर सके ये दो दिन. इसी इसी थॉट से हम खुश हो जाते हैं. जैसे या किसी का वीकेंड अलग कुछ ट्रिगर होता है, किसी के लिए फ्राइडे इवनिंग या फिर किसी के लिए सैटरडे ब्रेकफास्ट. आई वॉन्ट टू नो वॉट डू यू थिंक अबाउट how your weekend starts and when does it really start. The studio number is 9722355555. I'm waiting for your answer and it better be a wow. Say wow.

कल तो आएगा ही, और कल आने वाला है वीकेंड, यानी कि फ्राइडे ही हम अपने वीकेंड के बारे में सोचने लगते हैं. और हमें काम ही क्या है यार, मंडे टू फ्राइडे जस्ट वी स्लॉग इन द ऑफिस एंड ऑल वी लुक फॉरवर्ड टू इज दोज आई मीन आर दोज 2 डेज. बट चैन का है इंसान को, नहीं है ना? कोई बात नहीं, हम है ना उसके लिए, ताकि यू फील गुड, यू एंजॉय द म्यूजिक एंड यू कैन फील द वाइब ऑफ द फ्राइडे. दिस इज आफ्टरनून अड्डा विथ मी रमिता, एंड यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशा रेडियो. टुडे इज 26th of June, यानी कि आज रिलीज होने वाला है वेलकम टू द जंगल. दिस इज अ मच मोर एंटिसिपेटेड मूवी, यानी कि जिस दिन से, पहले दिन से इस मूवी का जो पोस्टर निकला था ना, आई मीन जगह कम पड़ रही थी पोस्टर में कि और किस किस को अकोमोडेट कर सकते थे प्रोड्यूसर इस फिल्म में. यानी कि अगर मैं पूरे इंडस्ट्री का नाम ले लूं, द एंटायर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज इनसाइड दिस पोस्टर एज वेल एज इन द मूवी ऑफ कोर्स. बट सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे इस मामले में, आई मीन इस फिल्म की, यही लग रही है. नॉट दैट इट इज द थर्ड फ्रेंचाइजी ऑफ द वेलकम यूनिवर्स, नॉट दैट इट इज अ मल्टी स्टारर, बट स्पेसिफिकली इट इज ब्रिंगिंग दीज टू लव बर्ड्स 90s के, यानी कि अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन बैक आफ्टर 2 decades. आई मीन उनकी हिस्ट्री, जो जिन जिनको अबाउट बॉलीवुड पता है, तो उनकी उनको पता ही है कि हाउ देयर इंगेजमेंट ब्रोक एंड वॉट बिटरनेस दे हैड बिटवीन दिमसेल्स. बट थैंक्स टू टाइम, वो कहते हैं ना, टाइम हील्स एवरीथिंग. दे आर बैक टुगेदर एंड आई एम इनक्रेडिबली वॉचिंग, आई मीन पेइंग डिटेल्ड अटेंशन टू इन ये लोग कैसे दे आर शेयरिंग द स्क्रीन विद देम इन दिस मूवी वेलकम टू द जंगल विच इज रिलीजिंग टूडे. चलिए इसी बात पे इसी मूवी का एक गाना सुन लेते हैं यार. इट्स वेलकम टू द जंगल बेबी.

0: किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम 9191 काइज़रवे स्वीट 205 फ्रिस्को। आर यू सीकिंग क्लैरिटी इन लाइफ, वंडरिंग व्हाट डेस्टिनी हैज इन स्टोर फॉर यू।
2: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास, 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
1: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
2: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से, नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
3: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम, ओके, नेम ऑफ द लॉयर, उमर ख्वाजा।
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
5: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
6: Shaadi Biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
8: माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
11: Excuse me. It's called being loyal.
10: It's called being predictable.
11: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
10: And what's so special at Neon Cactus?
11: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
10: Not bad.
11: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
10: Okay, this I didn't expect from you.
11: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन

0: मटर गश्ती ही चलने वाली है और थोड़ा सा इंतजार, इसके बाद ही आपके ऑफिस आज खत्म होने वाले हैं। घर पे सब इकट्ठे, सब एक साथ होने वाले हैं एंड यू गोना हैव अ वंडरफुल वीकेंड। एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई एम विशिंग फॉर यू। यू आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनीशिया रेडियो। मैं हूं रमिता एंड दिस आफ्टरनून अड्डा इट्स अ फ्राइडे। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल में आते हैं आज कि अगर पूरा वीकेंड सिर्फ एक ही खाना आपको खाना पड़े तो आप क्या चूज करोगे? वो बिरयानी होगा, पिज्जाज होगा, चाट होगा, मोमो होगा, बटर चिकन होगा या फिर डोसा? मैं गारंटी देती हूँ इस डिस्कशन में तो दोस्ती टूट सकती है बाय गॉड, लेकिन मजा बहुत आएगा। खैर, अगर आपको अपने खाने का प्लान अगर आपका इधर उधर है, चल रहा है, तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ ना, क्योंकि गिव अवे टाइम है। आप एक गिव अवे जी सकते हो ओनली ऑन फनीशिया रेडियो फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स विच इज लोकेटेड इन एलन। ऑल यू हैव टू डू इज कॉल इन द स्टूडियो। स्टूडियो का नंबर इज 9722355555 एंड टेल मी द नेम ऑफ द म्यूजिकल डुओ ऑफ द नेक्स्ट सॉन्ग दैट आई एम गोइंग टू प्ले बिकॉज आई हैव लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम। सो हियर इट आउट एंड कॉल इन द स्टूडियो और जीत जाओ एक चंडी बाइट से कढ़ाई चिकन या फिर कढ़ाई पनीर। हियर यू गो डैलस, नेम द म्यूजिकल डुओ ऑफ दिस सॉन्ग।
1: हियर वी गो अगेन, ऑथेंटिक ओरिजिनल एंड बेटर देन ऑलराइट।

दस बहाने का तो पता नहीं, बट एक ही बहाना है आप दिल भी नहीं अपने गिव अवे ले जाने का. ऑल यू हैव टू डू इज टू कीप लिसनिंग टू फनीशा रेडियो 104.9 FM. कॉल इन द स्टूडियो एंड विन योर गिव अवे इज ऑलमोस्ट एट एवरी आवर. राइट नाउ चंडीगढ़ बाइट से जो गिव अवे आई वॉज ऑफरिंग टू जीत लिया है गीता मुथुकुमार ने बाय आंसरिंग द सिंपल क्वेश्चन. यस यस, द म्यूजिकल डुओ इज विशाल एंड शेखर. और क्यों ना हो भाई, आपको क्यों नहीं आएगा आंसर. वी हैव एक्चुअली हैव बीन लिसनिंग टू दिस डुओ ऑलमोस्ट फॉर द पास्ट 26 years. एंड गेस व्हाट बॉलीवुड फैंस, आपका जो प्लेलिस्ट था ना 26 साल से, दैट इज अबाउट टू कम अलाइव बिकॉज विशाल एंड शेखर इज गोइंग टू परफॉर्म विद देयर सुपर हिट सॉन्ग्स विद इन द सुपर हिट टूर इन डालस ऑन संडे जुलाई 12th एट द कर्टिस कर्लविल सेंटर इन गार्लैंड. टिकट्स के लिए दे आर ऑन सेल नाउ एंड यू हैव टू विजिट cashpatelproductions.com एंड इफ यू मेंशन और यूज द कोड फन एशिया यू गेट अ 30% डिस्काउंट. सो दैट्स द न्यूज. गो देयर टू cashpatelproductions.com, गेट योर टिकट्स एंड वाइब विद विशाल एंड शेखर म्यूजिक. फिलहाल लेट्स डायरेक्ट रीडायरेक्ट यू टू समवेयर एल्स. प्रीतम का म्यूजिक भी सुन लो यार, गाने तो इनके भी जबरदस्त है.

ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2. यार ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा इसकी बिजनेस तो है ही, बट पीपल आर गोइंग गागा ओवर टू थिंग्स. एक तो कृति सानन और दूसरा कृति सानन. जस्ट जोकिंग, इट इज डूइंग वंडरफुल एट द बॉक्स ऑफिस. ऑलमोस्ट फर्स्ट वीकेंड में ही इसने 100 करोड़, आई मीन इट हैज एंटर्ड द 100 करोड़ क्लब एंड पीपल आर still watching it and loving it. So are we. Cocktail 2, ladies and gentlemen, is still in the theaters. Go and enjoy with your friends and family, kyunki you know good movies they should be watched and enjoyed. Or to koi reason any, rather you have many more reasons to you know take a good time during this weekend, kyunki Bollywood na hame bahut sare cheeze weekends ke liye sikhati hai. कैसे सिखाती है, आई विल गिव यू अ वैलिड एंड प्रॉपर पॉइंट जस्ट बैक टू बैक इज दो गाने के बाद. फिलहाल टेकिंग यू बैक टू द 90s बॉलीवुड एरा अ लिटिल, बिकॉज पाजी तो छाए हुए थे ही वो तब, अभी भी इक्वली छाए हुए. यार अल्फा का ट्रेलर निकला है, देखा क्या?

You're listening to 104.9 FM Fanisha Radio. मैं हूँ रमिता and this afternoon अड्डा we are talking about the weekend, यानी कि it's a Friday. But उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि for 13 years Texas Primary Care Clinic has been proudly caring for our community और उनके जो new location है that is open in Main Street Kaiser Way that is called Lenoxy Medical which has the ultimate सुविधाएं मैं बोल सकती हूँ ऑफ प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर इन हाउस लैब टेस्टिंग एक्सरे सिटी स्कैन्स कार्डियक डायग्नोस्टिक्स और हिमालयन मेड स्पा भी फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य लेनॉक्सी मेडिकल इज ओपन 7 days अ वीक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यू कैन वॉक इन एनी टाइम एंड यू डो नॉट नीड एनी अपॉइंटमेंट्स फॉर Guys who are looking out for their primary care solution, it is Texas Primary Care Clinic for you.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
7: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
8: इट्स लॉसन।
7: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
8: इट्स लॉसन।
7: डैडी व्हाट इज द लॉ?
9: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स, गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
10: बेटा 95% आए?
11: हाँ मम्मी।
10: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
12: मेरा?
10: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
12: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
13: भूख लगी
14: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
15: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. Honestly, ये सिर्फ खाना नहीं है, it's what your mood is actually craving.
4: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
16: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
17: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
18: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
20: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
21: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
20: क्या मतलब?
21: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
20: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
21: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914।
20: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
22: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
23: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
24: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
23: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
24: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।

दुआओं का पता नहीं, बट मैं वापस आपको दे सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ गिव अवे ओनली ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM. चलिए, वक्त है एक फन पिज्जा किचन से $10 गिफ्ट का जीतने का. यानी कि सिंपल सा सवाल जो कि अगले गाने के साथ जुड़ा हुआ है. ऑल यू हैव टू डू इज टेल मी द नेम ऑफ द सॉन्ग फ्रॉम विच आई एम प्लेइंग द नेक्स्ट ट्रैक. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. कॉल मी एंड टेल मी द नेक्स्ट ट्रैक का फिल्म का नाम. इससे आप जीतेंगे एक फन पिज्जा किचन से $10 गिफ्ट कार्ड, विच इज लोकेटेड फन पिज्जा किचन विच इज लोकेटेड इन फ्रिस्को.

ख्वाहिश तो एक ही है कि आप मुझे कॉल करिए और जीत जाए एक $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को. और बहुत ही राइटफुली राइट आंसर देके ये जो गिफ्ट कार्ड है जीत लिया है सोनिया ने. कंग्रेचुलेशन सोनिया. यस, इट वाज फ्रॉम द मूवी कांटे. एंड आई गॉट एक्चुअली बहुत सारे क्या बोलते हैं मुझे, एक्चुअली इट्स नॉट फ्रॉम द कांटे, माई मिस्टेक, इट्स फ्रॉम मुसाफिर. येस सॉरी, शी हैज़ वन द गिफ्ट कार्ड फ्रॉम द फिल्म मुसाफिर फ्रॉम फन पिज्जा किचन बाय राइटफुली गिविंग द आंसर दैट दिस सॉन्ग वॉज फ्रॉम मुसाफिर. एक्चुअली बहुत लोगों ने गलत जवाब दिया कि इट इज़ फ्रॉम कांटे. कुछ लोगों ने ये जवाब दिया था कि इट्स फ्रॉम द मूवी ताल एंड दे मिस confused it with some other song, but no, it is from Musafir, as rightfully answered by Sonia. So if you still have any doubts, any confusion के भाई call लगाते हैं call नहीं लगता है या गलत answer देते हैं, कोई बात नहीं यार, हमारे इस Fun Asia Radio में इतने सारे shows है, हर घंटे कोई ना कोई giveaways आपके लिए मौजूद है. Better try your luck next time. Till then, enjoy the music only and Fun Asia Radio 104.9 FM. This is Afternoon Adda with me, Rumita.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
2: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
1: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
3: वेट, व्हाट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
5: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
6: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
7: हाँ।
6: घर रिलोकेट करनी है?
7: हाँ।
6: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
7: हाँ भाई हाँ।
6: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
8: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
9: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
10: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
11: लिया।
10: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
11: नहीं आया।
10: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772, that's 972-863-772.
1: Visit www.senadainc.com today.
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
1: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
13: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
14: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
15: इन प्लेनो।
14: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
16: छोटा सा मेरो मदन गोपाल।
17: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator, Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
18: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funnacious Radio.

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Financial Radio सुन रहे हैं आप. ये है आपका afternoon drive time with Sunehri Kiran. This is 104.9 FM, मेरा आपका सबका favorite radio station. आज की दोपहर मेरे साथ connect करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप जानते हैं जी, आज है Friday. So Friday 2:30 to 3 तक आपके लिए लेके आती हूँ मिक्स पॉट, जहाँ गाने कुछ नए कुछ पुराने दोनों का मिक्सचर आपके लिए प्ले किया जाता है. और फिर 3:30 to 4:30 तक बच्चा पार्टी. It is your time, Kids Junction. You can call in and request your favorite song, and I will definitely play it for you. The only request is that it has to be a Hindi or a Bollywood song, so that everyone who's listening to Fun Asia can enjoy your choice just as much as you're enjoying it. So, बहुत कुछ आज आपके लिए lined up है. बिल्कुल कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ. Let's begin our mix spot right here.

हम किसी से कम नहीं मूवी से सुन रहे थे आप ये गाना आशा भोसले जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में। मिक्स पॉट में कुछ नए और कुछ पुराने गाने आपके लिए लेकर आती हूँ जल्दी से आपके लिए, मतलब कोशिश करती हूँ कि वो ही सिलसिला सा जारी रहे। जैसे ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना से मुझे याद आया ये गाना, यानी के K3G का ये लड़का हाय अल्लाह। एंजॉय।

आज जब मैं यहाँ स्टूडियो आ रही थी तो मैंने सड़क पे एक एक्सीडेंट देखा एंड इट वाज कॉजिंग अ लॉट ऑफ बैकअप एंड दैट जस्ट थॉट मी गिव मी अ थॉट कि मुझे जाके आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है, और वो बात है अटर्नी उमर ख्वाजा को लेके. अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन कैन बी स्ट्रेसफुल. यू रियली डोंट नीड टू डील विद इट योर सेल्फ. डीलिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी, पेपर वर्क, लीगैलिटीज, निटिग्रिटीज, एवरीथिंग, यू नीड एन अटर्नी बाय योर साइड जो आपके लिए ये सब कुछ हैंडल करेंगे विदाउट गिविंग यू एनी स्ट्रेस. एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. नॉट ओनली विल दे हेल्प यू फाइट योर केस, बट दे विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अंटिल यू विन. सो इट इज एब्सोल्युटली अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. यू और एनी वन यू नो और केयर फॉर इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, गिव दम अटर्नी उमर ख्वाजा नंबर. दैट नंबर इज 469-300-5046. वो नंबर है जहां आप अटर्नी उमर ख्वाजा से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, विच इज अटर्नी उमर OMAR attorneyomar.com. दिस इज मिक्स स्पॉट राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

मिक्स स्पॉट सुन रहे हैं आप कुछ नए और कुछ पुराने गाने राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. वी हैव अबाउट 8 मोर मिनट्स एंड देन वी विल एंटर इनटू किड्स जंक्शन. बच्चों के लिए ये खास डेढ़ घंटा जो हम डेडिकेट करते हैं 3 PM टू 4:30 PM एवरी फ्राइडे विद सुनहरी किरण. तो वो सेगमेंट अभी शुरू होने वाला है जी. धनंजय थैंक यू सो मच आपकी फोन कॉल का एंड फॉर लाइकिंग एंड अप्रिशिएटिंग द म्यूजिक दैट आई एम प्लेइंग फॉर यू. दिस वन इज अनदर नंबर स्पेशली गोइंग आउट टू यू.

गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गुलु गु

0: Well, that was all the time that I had for you for the mix spot. जिसमें प्ले करती हूँ मैं आपके लिए कुछ नए और कुछ पुराने गाने. और अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो we will be entering into kids junction. बच्चा पार्टी रेडी हो जाइए. I am here to take your calls live. I will see you after the break.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
5: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को.
6: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
5: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
7: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
9: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
10: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating route, rerouting.
10: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
11: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
10: क्यों?
11: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
10: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
12: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
11: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
8: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 AM to 5 PM Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies night and college nights bhi.
13: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
15: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
14: सच में? सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
17: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
3: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
4: Tarikh par tarikh.
5: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
3: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
6: I've been researching retirement planning.
7: Oh, really? Where?
6: Google, YouTube, a guy on TikTok.
7: Or you could just talk to WealthActive.
6: What's the difference?
7: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
5: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
8: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
9: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
8: कहाँ?
10: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
5: फूडिस्तान इन ऑबरी. एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, one vibe. Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
5: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
13: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी.
14: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
15: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
14: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
15: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. The Flavor Lounge, हर बाई सुपर हिट.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
16: क्या मतलब?
17: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
17: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
18: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsor sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
4: कितने आदमी थे?
20: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: All right, जी, that was played on Shubh's request. I still have a few requests lined up, जो के इस ब्रेक के बाद पूरी करने की कोशिश करेंगे. 972-235-5555 is the number to the studio. I am taking kids' requests till 4:30 p.m. Stay tuned and keep listening.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
8: Har khushi mein aapke saath, Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard off 635 East in Irving.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
8: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
10: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
11: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
12: It's Lawson.
11: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
12: It's Lawson.
11: Daddy, what is the law?
13: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: मामू, देखो क्या हो गया।
19: ओ, क्या हो गया?
18: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
19: ओए, जर्मन का कमाल है।
18: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
19: ओए, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
8: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
20: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
8: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
21: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
8: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
0: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with

और जी रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से आया था बर्थडे बॉय के लिए वन आउट ऑफ फोर डिशेस एंड विश्वम वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी बर्थडे. अगर आप बच्चों में से कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है तो आई हैव वन मोर गिव अवे फॉर यू फ्रॉम इंडिया बाजार लोकेटेड इन फोर्ट वर्थ. इफ यू आर इन फोर्ट वर्थ, केलर, हर्स्ट और हैजलेट, यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ विनिंग दिस स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर. इफ यू आर हैविंग अ बर्थडे टुडे, इट इज टाइम नाउ फॉर यू टू गिव मी अ कॉल. दिस इज ओनली वैलिड for Bachcha Party, okay? This is Kids Junction special and this is our special giveaway going out to all you beautiful kids out there jo participate karte hain hamare saath right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. So India Bazaar is located in Fort Worth, is located in 5152 Quadrant Way. If you can go and collect your grocery hamper, give me a call if you are celebrating your birthday today. That is exactly today. Aaj hi ka date hai. If not, to phir hum aage chalke iska koi aur giveaway karenge. Lekin agar aap karte hain aaj apna birthday celebrate, to mujhe call karke bataiye. India Bazaar Fort Worth ki taraf se aapke liye aaya hai special grocery hamper. Waise, you do know that India Bazaar is your one-stop shop for all daily desi essentials, jaise ki grocery, produce, spices, snacks, and everything that you need in your kitchen.

0: मेरा घर।
1: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance. I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty. I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
2: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
1: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
3: Documents ya parcel bhejni hai?
4: हाँ,
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ,
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ।
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
5: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
7: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
6: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
7: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
8: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
9: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
10: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
9: नहीं।
10: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
9: नहीं।
10: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
9: वो भी नहीं।
10: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
8: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
6: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ।
7: Front page का तो पता नहीं, पर तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है।
6: कैसे?
7: Page 3 eatery?
6: No, not another restaurant again.
7: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
6: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं।
11: Page 3 Eatery, eat, sip, gossip, repeat.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: वेट, इतना सब और प्राइस?
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं हीरो।
15: जीनी, हुकम मेरे आका,
16: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
15: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
16: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
15: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
16: और एंटरटेनमेंट?
15: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
16: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
15: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
17: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
18: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

You tuned into 104.9 FM Financial Radio Afternoon Drive Time with सुनहरी किरण में मैं किरण आपके साथ मौजूद ढाई बजे से लेके पांच बजे तक मंडे थ्रू फ्राइडे पांच दिन वीकडेज के मेरा और आपका साथ रहता है. आई ब्रिंग यू समथिंग डिफरेंट एवरी डे. आज किड्स जंक्शन में बहुत मजा आया. बच्चे फुल टाइम जो है वो एक्टिव थे और बहुत सारी फोन कॉल्स आई, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई और बहुत सारे गिव अवेज मैंने बच्चों को दिए. बच्चा पार्टी फ्राइडेज इज टोटली डेडिकेटेड टू यू एंड आई ब्रिंग सो मेनी गिव अवेज फॉर यू. सो हर हफ्ते मेरे साथ यू ही कनेक्टेड रहिए सो दैट आई हैव अ चांस ऑफ गिविंग ऑल दोस गिव अवेज टू यू. और अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जी कि अगर आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज बिल्ड करना चाहते हैं तो फिर माई टाइम इक्विटी लेड बाय सीपीएस सुधीर पाए इज वेयर यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, हर तरह की आपको यू नो एडवाइस देंगे और आपके लिए हेल्प आपके साथ यू नो दे विल हेल्प यू. चाहे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग कर रहे हो, रिटायरमेंट या यू वॉन्ट टू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट, माई टाइम इक्विटी आपको पर्सनलाइज सोल्यूशंस डिजाइन करके देंगे aimed around your goals. So, ये बात सुनकर अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आया तो नोट कीजिए नंबर 4697021272. 4697021272 is the number to give them a call or you can visit their website which is mytimeequity.com. And before I play the next song, I must tell you the views and opinions expressed in these live announcements as well as the interviews that we do here on the show are paid advertisements and does not necessarily represent the official views of the radio station nor the RJ.

And it is time now to give you the weather update. वक्त आ चला है जी, weather, traffic, gold price, currency, सब कुछ lined up है मेरे पास आपके लिए. आज है Friday, June the 26th, 4:43 PM in the studio. And city of McKinney में इस वक्त है 91 degrees. However, it feels like 99 right now. So, काफी गर्मी का सा समा है बाहर. दिन रहा mostly sunny, highs in the mid 90s. जबकि शाम रहेगी mostly clear in the evening, then becoming partly cloudy. Lows will be in upper 70s. Pollen count आज का 5.5, which is medium. जबकि UV index is extremely high, 10 और 11 के दरमियान है नंबर जी. तो please keep yourselves hydrated and make sure you are wearing sunscreens when you are outside in the sun. सनराइज आज का हुआ 6:19, 6:19 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 8:39 PM. और इसी के साथ कल यानी कि सैटरडे भी हमें बिल्कुल नॉन बारिश वाला दिन दिख रहा है. नॉन बारिश इज अ वर्ड वैसे. अगर सनी रहेगा दिन विद हाईज इन दी मिड 90s, जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लियर विद लोज इन दी लोअर 70s. और संडे भी आपके लिए सनी ही होने वाला है, हाईज इन दी अपर 90s. शाम भी रहेगी मोस्टली क्लियर विद लोज इन दी upper 70s. So weekend will be clear for you. Jo bhi aap plan kar rahe hain apne liye, it is time to plan. Bas sunscreens as well as proper hydration. That is a must.

आज वीकेंड है और अगर आपका खाना पकाने का दिल नहीं कर रहा या कोई गेस्ट आ रहे हैं और आपको घर जैसा खाना तो परोसना है लेकिन किचन में जाने का दिल नहीं है, तो मैं आपके लिए सलूशन देती हूँ. दैट इज तंदूरी फ्लेम, गार्लैंड में लोकेटेड है जी. जल्दी से अपना खाना या तो ले जाइए वहाँ पे, वहाँ जाइए या गेस्ट को ले जाइए या फिर ऑर्डर करके घर ले आइए. ऑल योर फेवरेट नॉर्थ इंडियन कुजीन जैसे कि सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स, करीज एज वेल एज नान्स, हर तरह की, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल एट तंदूरी फ्लेम. और सबसे बेहतरीन बात, एवरीथिंग इज अवेलेबल बिल्कुल घर जैसे खाने का स्वाद आएगा आपको. सो चेक आउट तंदूरी फ्लेम लोकेटेड इन गार्लैंड. एंड विद दैट इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द करेंसी अपडेट. फ्राइडे जून द 26 4:49 अराउंड 4:50 PM इन द स्टूडियो एंड अकॉर्डिंग टू xrates.com जी, यूरो इस वक्त ट्रेड कर रहा है 0.87 पे विद रिस्पेक्ट टू 1 US डॉलर. ब्रिटिश पाउंड 0.75, इंडियन रुपी 94.32 पे स्टैंड कर रहा है, कैनेडियन डॉलर 1.41 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी रुपी 277.99 पाकिस्तानी रुपी इज अ ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. नेपाली रुपी 150.98, जबकि बांग्लादेशी टका 122.99 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर.

एंड विद दैट इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द गोल्ड प्राइस अपडेट. आज ही इस वक्त 4:53 PM अकॉर्डिंग टू goldprice.org गोल्ड प्राइस पर आउंस है $4,071.95 जबकि एक ग्राम सोने की कीमत इस वक्त है $130.92. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $1.27 का इजाफा देखने को मिला जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $39.48 का इजाफा देखने को मिला. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू व योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. इस गाने के बाद वापस आके इट इज टाइम फॉर मी टू रैप अप. बट बिफोर दैट आई विल गिव यू द ट्रैफिक अपडेट. स्टे ट्यून्ड.

0: डिस्को नेवर डाइज।
1: और इसी के साथ टाइम आ चला है मेरा आपसे विदा लेने का। इट इज टाइम फॉर मी टू से बाय टू यू, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू द ट्रैफिक अपडेट। दो तीन इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं जी। सबसे पहले देयर इज अ डिसेबल्ड व्हीकल एट 35 ईस्ट टुवर्ड्स रॉयल लेन साउथ बाउंड, जिसकी वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड, कॉजिंग अ लॉट ऑफ बैकअप एट दिस स्पॉट। अराउंड 4:10 पे ये रिपोर्ट हुआ है, तो आई गेस अब थोड़ा सा क्लियर अप होना शुरू हो गया होगा। देर इज अ कोलिजन दैट इज रिपोर्टेड एट IH-20 टुवर्ड्स IH-45 ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से 3 out of 7 लेन्स आर ब्लॉक्ड, इंक्लूडिंग एन एग्जिट लेन। सो द सेवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई। अगर आप यहां पहुंच रहे हैं तो प्लीज बी केयरफुल एंड बी विजिलेंट। देर इज अनदर कोलिजन दैट इज रिपोर्टेड एट 35 ईस्ट टुवर्ड्स कॉन्टिनेंटल एवेन्यू साउथ बाउंड। 4:40 पे ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, तो प्रॉबेबली अभी बहुत सारा बैकअप बिल्ड हो रहा है। टू लेन्स आर ब्लॉक्ड, द सिवेरिटी इज रिपोर्टेड हाई। और अभी अभी एक बिल्कुल नया इंसिडेंट, अभी तो टाइम भी नहीं रिपोर्ट हुआ उसका, नजर आ रहा है IH-30 पे टूवर्ड्स हराइजन रोड FM-3097 west bound. Two lanes are blocked, including the exit lanes. 2 out of 5 are blocked. So, chunke ye abhi abhi report hua hai, to aapko yahan pe bahut sara backup milega. The severity is reported are high and ambulances have been called. So, these are what your roads in Dallas looks like right now. Have a lovely, lovely rest of your day, as well as drive safe wherever you are going, and enjoy your weekend. I will see you Monday, same place, same time, 2:30 p.m. till 5 p.m. right here on 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting with me this afternoon.

Hey,

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

0: I love the plan. Thank God it's Friday with me, Navneeta. 5 to 8, straight from the heart.
1: ये थैंक गॉड इट्स फ्राइडे ऐसा है मेरे शो का नाम आप खुद ही बोलते होंगे राइट थैंक गॉड इट्स फ्राइडे इट इज हाउ इट इज बिकॉज पूरा हफ्ता निकल जाने के बाद ना ऐसा ही लगता है फ्राइडे की शाम को थैंक गॉड इट्स फ्राइडे वो राहत की सांस के लिए मुबारक हो मेरे शो पे आने के लिए ऑसम थैंक यू धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू हु आर राइट नाउ ट्यून इन टू 104.9 FM फनी जॉय रेडियो योर फेवरेट रेडियो स्टेशन सुबह शाम दिन रात रोजाना हफ्ते हम आते हैं हंसते हंसते और चाहते हैं बस आपकी एक मुस्कान फ्राइडे की बात तो ये है कि वीकेंड का वाइब रहता है जो आई ड्रॉप इन अ लिटिल अर्ली और मैं कहती हूँ कि मूवीज कौन सी हैं जो जानी है And I'll come to that. But ये जो movie last week released हुई Cocktail 2, oh my God, it is rocking. और ये गाना तो बिल्कुल सबके मुंह पे चढ़ा हुआ है.

माशूका गाने को ऐसा भी बना दिया जा सकता है. ओ माय गॉड, ये कौन बना दिया है माशूका गाने को. एंड यू नो व्हेन पीपल हैव टू ब्लफ इट अराउंड दे कैन डू एनीथिंग. दे कैन यूज द सेम वीडियो, दे कैन यूज द सेम लुक ऑफ द मूवी एंड दे कैन जस्ट गो मेक इट. मतलब जिंदगी में क्या ही तो हो रहा है. और क्या ही तो होने के बारे में तो आज मैं जब बताने वाली हूँ ना आपको, इतना कुछ हो रहा है जिंदगी में कि क्या ही तो हो रहा है.

Mamma Mashuka, beautiful Mashuka. My God, this movie simply is amazing right now. अगर आप देखें तो, और ये जो Mashuka गाना था, प्रीतम का म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, सो डेफिनेटली जब ये दोनों साथ होते हैं तो कुछ न कुछ कमाल हो ही जाता है. न्यू एज सॉन्ग, न्यू एज मूवी, दीज टू, शाहिद कपूर विद कृति सैनन एंड रश्मिका मंडाना. आई थिंक रश्मिका डिड अ ग्रेट जॉब इन दिस मूवी. आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव लाइक्ड हर, रियली शी इज लुक्ड गुड, शी इज डन अ ग्रेट परफॉर्मेंस. और ऑफ कोर्स आवर वेरी ओन कृति सैनन हैज़ ऑलवेज बिन. और ये जब हम कॉकटेल वन का सोचते हैं और दीपिका पादुकोण को सोचते हैं एज कृति सैनन, और दूसरा जो डायना पेंटी ने रोल किया था, सो देयर इज वन गुड गर्ल एंड वन वेरी बोल्ड गर्ल, वैसा ही कॉन्सेप्ट में है. एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू हैव सीन इट, बट वेरी नाइसली ट्रीटेड, वेरी क्यूट मूवी. वन टाइम वॉच तो बिल्कुल बनता है, टू टाइम्स वॉच भी आप कर सकते हैं जब ये आपके OTT में आ जाए. बट डेफिनेटली थिएटर्स में जाके ज़रूर देखिए, बिकॉज वेन यू गो टू द थिएटर्स, you know you have approved that yes I can go to the theater to watch a film which is good in the times. Nahi to har hi kuch aajkal hum ghar par hi dekh rahe hain. Where is that experience of going to the movie when you're watching everything at home? And I would always say nahi dekhe to better hai. Sam, aapke liye ye wala gana. Thank you for calling as soon as enter my show on Friday. 5 to 8 straight from the heart. रहता है every Friday के Friday आपका साथ मेरे साथ, और ये वाला गाना Sam के लिए on Funny Jar Radio. अभी नहीं जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Heere moti maino chahu.
3: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
4: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
5: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनकी जिम्मेदारी.
6: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
5: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage. Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
7: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
7: ये क्या होता?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
5: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
10: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
7: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
10: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल.

0: now at a bigger location, just three doors down, with limited reservation available.
1: Aur sunao, house hunting kaisi chal rahi hai?
2: Kya bataun? It's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
1: You need to call Ajay Prabhu of Beam Real Estate. He's an experienced realtor who provides exceptional service plus cashback at closing. Ajay reviews each house thoroughly and shares all the pros and cons and negotiates the best price and builder incentives. Just visit ajayprabhu.com and see why people are raving about him.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
0: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
4: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
3: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभाल लेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
6: वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका। वैसे वेलकम टू द जंगल में भी स्वागत है आप सबका, बिकॉज वेलकम टू जंगल हैज रिलीज्ड और ये बहुत कमाल की फिल्म नजर आ रही है, वेलकम टू जंगल। तो स्वागत है आप सबका। लेकिन किसी ने कहा है, नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से, नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से, एक लिबास हमें भी दिया है खुदा ने अपने हिसाब से। ब्यूटीफुल, आपका लिबास आप पहनिए, क्यों बदले? बहरुपियाई तो खिलाएंगे हम अगर बदलते गए हर किसी के कहने पर। सो अपने लिबास में रहिए, बदलने की क्या ज़रूरत है। ये जंगल का गाना आपके लिए,

वेलकम, सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो। वेलकम है जी, वेलकम है आप सबको। वेलकम किया जाता है जब भी आप प्राइमरी हेल्थ केयर में जाते हैं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इनका कंप्लीट नाम है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर एब्सोल्युटली, अब मरीज हैं वो बात नहीं है, बट यू नीड टू बी वेलकम्ड एंड हर्ड एंड लिसन एंड स्पेंड टाइम विद। यही चाहता है जो भी बीमार कहीं भी जाए, जस्ट वही तो हमारे वल्नरेबल वक्त होते हैं जब वी फील दैट समबडी शुड टेक केयर ऑफ यू एंड एटलीस्ट शुड लिसन टू यू। कहाँ वो बचपन के दिन थे जब हम बीमार पड़ने पर इंजॉय करते थे, बिकॉज वी हैड आर पेरेंट्स लुकिंग आफ्टर अस। पूरा यू नो पूरा मोहल्ला ही हम बीमार होते थे तो पूछने चला आता था, बट आजकल हम इतने अकेले हो गए हैं कि हमारे को कोई दूसरा पूछे या ना पूछे, हमारे डॉक्टर भी हमें नहीं पूछते। दैट्स वाई दे आर हियर, दे से दैट वी स्पेंड टाइम इन एवरी अपॉइंटमेंट विच इज स्केड्यूल्ड एंड वी स्पेंड एटलीस्ट 30 मिनट्स टू हियर यू, टू लिसन टू यू एंड ट्रूली अंडरस्टैंड योर हेल्थ। जो वक्त लेता है, सिर्फ ऐसे ही नहीं, कोई को मेडिसिन दी जाती है, द पेशेंट नीड्स टू बी ट्रीटेड एज फैमिली एंड दैट्स वॉट दे डू। पैशन हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ द एंटायर कम्युनिटी मैटर्स टू देम, एज दे से पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज द नेम। एंड दैट्स नॉट ऑल, पैशन हेल्थ जो है वो बढ़ भी रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, कम्युनिटी बढ़ा रहे हैं, फैमिली बढ़ा रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली हायरिंग एज वेल एक्सपीरियंस प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस एंड साइकियाट्रिस्ट फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज। और अगर आप पैशनेट है अबाउट पेशेंट केयर, यू कैन सेंड योर रेज्यूमे टू पैशन हेल्थ फिजिशियंस @gmail.com, पैशन हेल्थ फिजिशियंस @gmail.com इनका ईमेल है, तो ज़रूर से याद रखिए। अगर आप चाहते हैं वो चेंज, यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट दैम @217-454-4639 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। दे आर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज आवर पैशन एंड दैट्स वॉट दे से। सुन रहे हैं आप 104.9 FM फनी जॉय रेडियो मेरे साथ इस शाम।

आया करो जी, सड़ी गल भूल के भी से याद आ रहा है। हमारे दरवाजे पर अचानक से कोई आ जाता है, यूजुअली हमारे इंडिया और वहाँ होते हैं यूजुअली ऐसा केस कि कोई आ जाता है तो अंदर से हम ऐसा सोचते हैं, यार कौन आ गया है यार, कौन आ मरा टाइप्स, घर पे। एंड जैसे ही दरवाज़ा खुल जाता है, हमारा पूरा एटीट्यूड, पूरा लुक, पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है और कहते हैं, ओह आइए आइए, आज तो हमारे भाग्य खुल गए, हम तो धन्य हो गए आप आ गए। मतलब ये जो स्विच ऑन स्विच ऑफ का मामला है, जो भी हो हमारे अंदर का हाल, हम बाहर मेहमान को देखे ना, एब्सोल्युटली डिफरेंट ही हो जाते हैं। तो आया करो, आप सड्डी गल भूल के भी हमारे घर आ जाया करो, लेकिन आप ऐसे आग धमक जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अमेरिका में तो बिल्कुल ही आप आग धमक नहीं सकते, यू हैव टू गिव अ कॉल, राइट? अदरवाइज आप अगर आग धमके ना, तो यहाँ पर तो मुंह भी बन सकता है। और यू से सुन रहे हो ना 4.9 FM फनीजा रेडियो। एक और गाना अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, दिस वन फ्रॉम द मूवी दैट इज गोइंग टू रिलीज सून, अल्फा। बहुत बहुत बज हो रहा है अराउंड अल्फा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अनदर स्पाई यूनिवर्स का एक अल्फा सेगमेंट विद अ गर्ल, आलिया भट्ट, और बाय आर एफ स्पाई यूनिवर्स का एक एडेड स्पाई। शर्वरी भी है इसमें।

0: World sing along.
1: My God, ये बम बम ये ही गाना था 104.9 FM पानी जो रेडियो पर आप सुन रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटे से छोटे नन्हे मुन्ने ब्रेक की तरफ हम बढ़े, आप कहीं मजा आएगा। ये जो ब्रेक है, ब्रेक से हम तुरंत लौटेंगे और फिर एक बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ हम पहले तो आगे बढ़ेंगे एंड देन उसके बाद कुछ नाइस वंस आ रहे हैं। सुनते रहिए 104.9 FM
2: नेशन का फन स्टेशन फनेशियर रेडियो।
3: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
4: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
3: सच में एक्सपेंसेस से इनकम? कैसे?
4: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
3: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे।
4: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
3: नंबर बोल जल्दी।
4: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
5: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। फ्रिस्को में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन। वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू। एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे। कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल। पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन। मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट विजिट।
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
12: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
13: It's Lawson.
12: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
13: It's Lawson.
12: Daddy, what is the law?
14: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
15: Ritesh, कभी सोचा है? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
16: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
15: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
16: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
17: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
18: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
1: सुबह शाम दिन रात रोजाना हर हफ्ते हम आते हैं हंसते हंसते, बस चाहते हैं आपकी एक मुस्कान। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों ट्यून इन करने के लिए और जुड़ने के लिए मेरे साथ। मैं आपकी होस्ट नवनीता 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट रहती हूँ ऑन फ्राइडेज ऑन माय शो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और ये होता है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे में।

Wow, this one was from the movie Once Again. हम जो देख रहे हैं और वी आर एंजॉइंग कॉकटेल टू क्वाइट एन इंटरेस्टिंग फिल्म बाय द स्टैंडर्ड्स व्हिच वी हैव टुडे. साथ दे या ना ये कहानी, समेट लो इन नाजुक पलों को, ना जाने ये लम्हे हो ना हो. समेट लो इन नाजुक पलों को, ना जाने ये लम्हे हो ना हो. हो भी ये लम्हे क्या मालूम, शामिल उन पलों में हम हो ना हो. यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी आर देयर, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी आर देयर नाउ, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी लिव नाउ. ये जो हम कल जो हो गया और परसों जो होगा या कल जो होगा उस पे रहते हैं और आज को एकदम ही अनदेखा कर देते हैं. सब खुशी हमारे पास है फिर भी हमें वो नज़र नहीं आती, चाहे वो मिल जाए जो हमें चाहिए था, उसके अलावा जो आ सके वो सोच में हमारी आज की खुशी ख़त्म हो जाती है. ऐसा होता है कि आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी आती है और कुछ पूछती है और आप कुछ चीज़ में बिजी हैं जो कल के लिए आप कर रहे हैं, एंड देन यू डू नॉट केयर टू लिसन टू देम जस्ट बिकॉज यू आर सो बिजी. बट वो उस वक्त का एहसास जब आप सब काम छोड़ के उसको 100% देकर उसकी मुस्कान देखें और अपनी मुस्कान बढ़ाएं, कल किसने देखा है? तभी तो मैंने कहा आज ही समेट लो इन नाजुक पलों को, ना जाने ये लम्हे हो ना हो. हो भी ये लम्हे क्या मालूम, शामिल उन पलों में हम हो ना हो. कितने जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर वो बच्चे ही नहीं रह जाते. ये तो एक एग्जाम्पल है, बट देयर सो मच टू थिंक अबाउट. बीइंग हैप्पी इज टू बी इन द नाउ. अब ये हमें लगता है बुकिश है, हमें समझ नहीं आती कि ये क्या आज में रहो, इस पल में रहो. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. रह के तो देखिए

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
8: अरे सारे तो सेम है।
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
8: ओह हाँ, ये तो अलग है।
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं, from timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
11: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
10: कहाँ?
12: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
13: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस One vibe.
14: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
15: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
11: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
15: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
16: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
17: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
14: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
18: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
19: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
20: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
21: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
22: लिया।
21: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
22: नहीं आया।
21: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-772। That's 972-863-772.
15: Visit www.sanadainc.com today. With your

वॉर टू ऋतिक रोशन, कियारा अडवाणी, प्रीतम का गाना, अरिजीत सिंह की आवाज़, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल एंड निकिता गांधी भी इस गाने में इन द फीमेल वॉइस. ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर यू ऑन दिस अमेजिंग फ्राइडे इवनिंग. तभी तो कहते हैं इसे थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. ऐसे कुछ गाने हैं जो दिल में बस जाते हैं, बट ऐसी कुछ बातें होती हैं जो दिल और दिमाग को थोड़ा हिला भी देती हैं. आई डोंट नो इफ अ लॉट ऑफ यू और इफ नॉट एट ऑल आर फॉलोइंग अ केस जो अभी सुर्खियों में बना हुआ है हमारे इंडिया में, और एब्सोल्युटली हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी होता है ज़िंदगी में. इफ़ यू आर फॉलोइंग द सिया कतान मर्डर केस, केतन एक्चुअली सिया जो हैं, और उन ही शी वॉज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ किलिंग केतन अग्रवाल जो 26 साल के हैं और थे अब तो. और ये एक सुर्खियों में बन गया है, न्यूज़ ऑल ओवर, एंड एवरी सिंगल डे देर इज़ समथिंग और द अदर कमिंग आउट ऑफ द स्टोरी, जो क्यों हुआ, क्या हुआ, इसे पूरा मर्डर केस को छुपाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की गई कि ये एक हादसा था. सो आई गेट इन टू अ लिटल बिट ऑफ डिटेल अबाउट दिस केस. और सिया और केतन और इन दोनों की सगाई हो गई. केतन 26 साल के हैं और सिया 20 साल की है, और बहुत ही अमीर खानदान से दोनों के दोनों, फ्रॉम अ रियल इस्टेट फैमिली, और ही इज़ फ्रॉम अ रियल इस्टेट कम्युनिटी, और दोनों इतने अमीर हैं कि द पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस एंगेजमेंट जो हो चुकी है इनकी, एंड दे वॉन्ट टू गेट दम मैरिड ऑफ. और शादी की बहुत ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग है, बहुत करोड़ों रुपये ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं एट्सेट्रा. अब सिया और केतन जाते हैं एक फोर्ट पर, लोहागढ़ फोर्ट लोनावला में, महाराष्ट्र में. और ऐसी बातें होती हैं कि उन सिया का बर्थडे है, जिसकी वजह से वहाँ पर जाएंगे, वील स्पेंड सम गुड टाइम एंड वी विल कम बैक. वहाँ क्या होता है, सिया एक्चुअली केतन को धक्का दे देती हैं फोर्ट से, एंड ही इज़ डेड. एंड देयर अगेन वही जगह पर चेतन उनको फॉलो कर रहा होता है. कौन है ये चेतन? अपेरेंटली सिया का बॉयफ्रेंड, हु इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस. पूरा स्टेज किया गया है स्टार्टिंग में, और फिर सिया जाती है लोनावला के रेगुलर पुलिस स्टेशन में जाके ये बता देती है कि हम यहाँ छुट्टी पे आए थे और ऐसे ऐसे केतन वहाँ पर गिर गए, इट वॉज एन एक्सीडेंट, ही फेल डाउन, एवरीथिंग, एंड टू मेनटेन द अपियरेंस दैट इट हैड. और फिर जाके सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट भी डाल देती है रोते हुए कि ऐसा हो गया, हादसा हो गया, दे वर गोइंग टू गेट मैरिड. और बैकग्राउंड स्टोरी का यही है कि डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली थी सिया और केतन की, और फरवरी में इनकी इंगेजमेंट हुई थी, नवंबर में शादी थी, लाविश 17 करोड़ की ये शादी. और छुपा हुआ हादसा ये था कि शी वॉज एक्चुअली हैविंग अ रिलेशनशिप विद चेतन चौधरी. और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से ये कुछ सब सामने आता है कि फैमिली के बहुत कुछ प्रेशराइजिंग की वजह से शी हैड अग्रीड टू गेट मैरिड टू केतन, वेर एज चेतन सिया को हर समय पीछे पड़ा था कि मुझसे शादी करो, मत जाओ कहीं और एट्सेट्रा. अब ये एवरी सिंगल डे कुछ न कुछ खबर आ रही है. एट वन टाइम सिया सेज आई हैड टोल्ड केतन दैट आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू हिम, और ही सेड हम लोग की इतनी बड़ी फैमिली है, इतना यू नो नाम है, यू कैन नॉट कॉल इट ऑफ राइट नाउ. एंड देन शी सेड आई इवन टोल्ड माय पेरेंट्स, बट किसी ने माना नहीं. और थर्ड थिंग दैट कम्स आउट टुडे इज़ दैट एक्चुअली केतन डिड नॉट हैव एनी हेयर एंड यूज टू वेयर अ विग, जिसकी वजह से शी डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी हिम जब उन्हें ये पता चला. सो शी हैड टोल्ड हिम बट ही डिड नॉट अग्री. However, ये पूरा हादसा मर्डर के अराउंड ही है, एंड द पुलिस इज इन्वॉल्व एंड द लॉयर्स आर नाउ इन्वॉल्व एंड पेरेंट्स आर नाउ ह्यूजली इन्वॉल्व. दे वॉन्ट अ मैसिव मैसिव केस अगेंस्ट द गर्ल एंड द गर्ल्स बॉयफ्रेंड, एंड दे आर रियली प्रेइंग एंड डिमांडिंग दैट दे ऑल्सो हैव द सेम फेट विच हैपन टू केतन. सो ये अभी नेशनल स्टोरी बनी हुई है, एवरी सिंगल डे कुछ नया आ रहा है. बट सोचने की बात ये है कि इतने ज़िंदगी में
कुछ हमारे साथ लाइफ में होते रहते हैं, बट यू नो हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, यू अंडरस्टैंड, बट प्लान करके इतने छोटी, ही इज़ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड सिया, एंड 26 ईयर्स ओल्ड वॉज केतन, हाउ कैन दे गेट इन टू डूइंग समथिंग विच इज़ सो सो सो हार्मफुल, सो सो फुल ऑफ इंटेंशन इन दिस लाइफ, एंड वॉट विल यू गेट आउट ऑफ इट? आप ये सोचते हैं कि ज़िंदगी बहुत आसान है, आप उससे छूट जाएंगे? ऐसा होता तो नहीं है, पर अब तो पकड़े गए हैं पूरी तरह, ज़िंदगी तो उनकी भी ख़त्म हो गई है। किसी की ख़त्म करोगे तो ऊपर वाला आपको तो छोड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो आपकी भी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। सो यस, फॉलोइंग दिस, आई डोंट नो, फॉलो तो हम करेंगे, बट सोच भी आती है कि क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है।

0: This is the song Chunar Chunar, let's go. Hai Jawani To Ishq Hona Hai. Varun Dhawan, Mrinal Thakur and Pooja Hegde ki ye awesome storyline aayi thi. David Dhawan ne fir se banaya after so many years in a movie which was really loved by all watching it. Sun rahe hain 104.9 FM Funija Radio. Yes, I'm getting a lot of calls, lot of people who are following the story of Sia and Ketan and Chetan, who comes in as the boyfriend of Sia. And the story I just gave you a gist, usme bahut kuch reveal hua hai one after the other. And yes, nobody has the right to take anybody's life. It is no. Just stay off that limit. Life mein hurt kar diya aap, wo hi galat hota hai. But aap हर्ट दिल का हर्ट कर सकते हो, बट रियल हर्ट टू द एक्सटेंट ऑफ किलिंग इज नॉट मतलब उसकी तो कोई रिहायती ही नहीं होनी चाहिए. दोस्तों, वेलकम टू द जंगल इज फाइनली हियर इन द थिएटर्स. अगर आपको फुल ऑन कॉमेडी, क्रेजी, कंफ्यूजन और एक से बढ़कर एक एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स पसंद है, तो ये वीकेंड का परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर हो सकता है. तो करना क्या है, जाना है थिएटर्स में, आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में. ये फिल्म आ चुकी है वेलकम टू द जंगल, डायरेक्टेड बाय अहमद खान, अक्षय कुमार के साथ एक स्टार स्टडेड कास्ट लेकर आ रहे हैं नॉन स्टॉप मस्ती और लाफ्टर के डोज. आप रिलीज हो चुकी है आज 26 ऑफ जून को. सो ग्रैब योर गैंग, बुक योर टिकट्स एंड एक्सपीरियंस द मैडनेस ऑन द बिग स्क्रीन. वेलकम टू द जंगल जो प्ले हो रही है इन द थिएटर्स राइट नाउ. तो बस करना क्या है, पहुंच जाना है वेलकम टू द जंगल. और
1: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है, ये वाला बहुत हैवी है. और ये कब पहना था लास्ट टाइम?
2: तो पहनती क्यों नहीं हो?
1: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेजन टाइप.
2: तो रोज वाला ले लो.
3: इंडियाज मोस्ट लव्ड एवरीडे ज्वेलरी ब्रांड कैरेट लेन इज हियर. गेट योर एवरीडे रियल डायमंड्स नाउ, बिकॉज ज्वेलरी इज मेंट टू बी वॉर्न, नॉट टू बी केप्ट इनसाइड अ लॉकर. कैरेट लेन नाउ ओपन नेक्स्ट टू तनिष्क इन फ्रिस्को.
4: मामू देखो क्या हो गया.
5: ओ, क्या हो गया?
4: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
5: ओए, जर्मन का कमाल है.
4: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
5: ओए नहीं, ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
6: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
7: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
3: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
7: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
8: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
9: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
10: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
12: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
13: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
14: मेरे कल वाले खाने में दोसा, आने वाले खाने में दोसा,
15: डोसा।
13: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
16: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
17: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
18: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
19: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
20: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
19: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
21: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
22: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसे

0: yours.
1: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
2: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
3: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
2: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
3: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
2: और एंटरटेनमेंट,
3: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
2: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
3: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
4: हाय, दिस इज विनय पाठक एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।
5: Welcome back. It is none other than Friday.

थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. यही तो बात है कि फ्राइडे को थैंक गॉड हम इसलिए कहते हैं, पूरा हफ्ता निकल जाता है कुछ ना कुछ करते, भागते दौड़ते, एक राहत की सांस तो आ ही जाती है फ्राइडे को, बिकॉज वी सी द नेक्स्ट टू डेज एज अ लिटिल रिलैक्स डे. सुबह प्यार से उठ सकते हैं, थोड़ी लंबी नींद ले सकते हैं, अलार्म क्लॉक डिस्टर्ब नहीं करेगा. चाहे आपके पास बहुत सारे चोर्स हो, काम हो, लेकिन टाइम्ड नहीं होता. देखिए, सुबह से शाम जब मंडे टू फ्राइडे होते हैं ना, दिमाग भी इस पर बहुत ज़्यादा प्ले करता है. व्हेन योर माइंड सेज कि यार काम है, ये है, वो है, ऑफिस का कभी भी कोई कॉल आ सकता है, एनीबडी कैन टैप ऑन टू यू फॉर आंसर्स, इट फील्स बिजी. जहाँ आपने दिमाग से अपने आप को साइड कर लिया ना कि शाम आ गई है फ्राइडे की, सो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे और वीकेंड आ चुका है अर्ली बिकॉज द वाइब इज ऑफ द वीकेंड शाम से ही, देन यू आर एनीवे रिलैक्स्ड. चाहे बहुत काम हो फिर भी आप रिलैक्स है. ये सब दिमाग का खेल है बाबू मशाए, क्यों उसी में फंसे चले जा रहे हो? Every single day can feel this way. दिमाग के खेल से थोड़े बाहर आ जाओ, सब देखो बाबू मोशाय.

ब्यूटिफुल प्रीतम का गाना, ये बैक टू बैक दो गाने आपके लिए, क्योंकि मैं एक बहुत ही खास वेरी ब्यूटिफुल पोएम आपके सामने ला रही थी, एंड आई थॉट लेट्स हैव टू सॉन्ग्स बैक टू बैक, एंड दिस वन नॉट माइन बट द वे दिस जेंटलमैन हैज सेड इट, शुभम श्याम है इनका नाम, बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, एंड इट टचेज योर हार्ट, कहते हैं ना दिल से दिल की बात दिल तक पहुंचे तो लगती है ठाएं, तो वैसे ही ये बात मुझे ठाएं लगी, एंड आई सेड कि चलो मेरे लिसनर्स को मैं बताओ, क्योंकि इतना मैं गल हिंदी हिंदी लेकर आती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, बट हमारी जो हिंदी भाषा है ना बहुत ही गहरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ग्रामर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसी पर है व्याकरण, जो ग्रामर होता है, लिखने वालों ने, भाषा की व्याख्या करने वालों ने जो भी चीज़, जो भी नाजुक पंखुड़ियों को स्त्रीलिंग कहा, स्त्रीलिंग फीमेल, यू नो स्त्रीलिंग कहते हैं ना, डिब्बी डब्बा, डब्बा पुल्लिंग, डिब्बी डिब्बिया, स्त्रीलिंग, सो जो भी नाजुक पंखुड़ियों को स्त्रीलिंग कहा, और नुकीली कांटों को पुल्लिंग, जब पानी मीठा रहा तब नदी स्त्रीलिंग रही, जब पानी खारा हो गया तो समुंदर पुल्लिंग हो गया, राइट, लाइक समुंदर गहरा है हम कहते हैं ना, और पानी और जैसे नदी बह रही है स्त्रीलिंग, पीपल हु डू नॉट नो स्त्रीलिंग पुल्लिंग एट ऑल, दिस विल गिव यू द कॉन्टेक्स्ट, जब पानी आसमान में रहा बहुत से बहुत दूर तो बादल पुल्लिंग रहा, और जब बादल बरसने लगा तो धरती पर तो बारिश स्त्रीलिंग हो गई, जो भी नाजुक युद्ध होता है शांति आती है, हवा चलती है तूफान आता है, तभी तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ये मज़ा, एंड यू नो व्हेन वी वर लर्निंग ग्रामर बहुत मज़ा आता था समझने में कि हम उसमें ई की मात्रा लगाए कि आ की, बिकॉज स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे है। व्याकरण, रचना करने वालों ने जो भी चीज़ नाजुकता से दिखी उन्हें, उसे स्त्रीत्व, उन्हें उसमें स्त्रीत्व दिखा, लाइक फीमेल, और जो कुछ भी यू नो नुकीला कठोर टाइप दिखा उसे पुलिंग डाल दिया, बिग ह्यूज, और संरक्षण की जिम्मेदारी, आई मीन संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन, इट्स अ ह्यूज वर्ड, संरक्षण की जिम्मेदारी सौंप दी समाज को, द एंटायर समाज, समाज ने संरक्षण को, इस प्रोटेक्शन को उनकी जिम्मेदारी जो है देखकर इस सारी की सारी कमजोरी को, इसे कमजोरी समझ लिया और समेट दिया आधी आबादी को दीवार के पीछे। ये नाजुकता, इस कमजोरी इज नॉट करेक्ट, बट कमजोरी सम, अगर आप प्रोटेक्शन करने वाले ही गलत हो तो उसको तो फिर दीवार के पीछे ही डाल देंगे ना, या तो समाज ने संरक्षण का सही मतलब नहीं सीखा, या फिर भाषा का निर्माण करने वालों ने, जो व्याकरण लिख रहे थे वो लिखने वालों ने ही करी होगी साजिश कि दैट बिकम्स वीक एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। वरना आप बताइए, चूड़ी पहन लेना कमजोरी कैसे हो सकता है, हाउ, अगर ये साजिश नहीं होती कि वीकनेस इज ऑल दिस, इट्स नॉट वीकनेस, इट इज जस्ट द सेंसिटिविटी, द सॉफ्टनेस, और सॉफ्टनेस इज नॉट वीकनेस। वीकनेस को दरवाजों के पीछे डाल दिया और सोचा कि वो कमजोरी है, सो दैट इज रॉन्ग, एंड दैट्स वाई द वुमेन नाउ are getting out, breaking that bond and screaming aloud and saying, no, we're not weak. Strength doesn't mean, that softness doesn't mean weakness. It's just we are women.

0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
6: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
7: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
6: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
8: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
9: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
8: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
9: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
2: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support, aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
6: Is sheher ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं, क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हूँ, तो वक्त है सही दिशा का।
10: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
11: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर फाइंडिंग सोलियन रिजल्ट्स में वेरी।
12: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं।
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं।
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं।
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
14: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
2: AG Fintax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
15: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator, Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees.
16: For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.

अगर आप उस मूड में आ चुके हैं, थैंक गॉड इस फ्राइडे वाले मूड में, तो मैं बता दूं झीलू राम आज क्या कह रहे हैं, तो शायद अगर अभी तक नहीं आया तो ये आपको मूड में ले आएगा। कैन यू बिलीव इट, झीलू राम ना बहुत ज़्यादा उन्होंने शराब पी ली, यू नो दैट इज़ हिज वीकनेस, इट्स ऑलवेज बिन, और आँख दान करने के लिए चले गए। आँख दान करने के लिए चले गए तो काउंटर पे जो क्लर्क था उसने पूछा कि कुछ कहना चाहते हैं आप? तो झीलू राम थोड़ा सोचते हैं, बोलते हैं हाँ मैं कहना चाहता हूँ, जिसे भी ना आप लगाओगे ना मेरी आँख, उसे आप ज़रूर से बता देना कि दो पैग लेने के बाद ही ये आँख खुलती है। सो फनी झीलू राम, यू ना आप पीकर ये राग कीजिए वैसे।

क्रेजी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, जब हम अपनी जिंदगी को अच्छी खासी चलती हुई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर लेते खुद ही से, तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज वॉट दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट. कॉकटेल 2 की बात कर रही हूँ, जिसमें कृति सैनन, रश्मिका मंडाना और शाहिद कपूर है, रनिंग इन योर थिएटर्स. कॉकटेल 2, आई थिंक द सेकेंड वीक इज डूइंग क्वाइट वेल एज वेल. दिस मूवी हैज डन वेल. और पता है, वेट आपके लिए ओवर हो गया है. बहुत लोग जो इस स्टोर का वेट कर रहे थे, PMJ जूल्स का, दे आर नाउ इन फ्रिस्को विथ ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप. आप एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टनिंग गोल्ड, डायमंड, ब्राइडल कलेक्शन फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन. और आप ये जो जॉय अभी उनका ग्रैंड ओपनिंग था 20 जून को, एंड ये है एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा गटमानेनी. आई एम सॉरी आई हैव प्रोनाउंस इट रॉन्ग, बट इट इज़ गटमानेनी आई थिंक. PMJ इज़ अ नेम ट्रस्टेड बाई जनरेशंस. विजिट PMJ जूल्स फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट एंड डिस्कवर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी. सुन रहे हैं 104.9 FM फनी एजा रेडियो मेरे साथ, और थैंक यू फॉर बींग विद मी ऑन दिस फ्राइडे.

ब्यूटिफुल 104.9 FM फर्नीचर रेडियो पर आपका स्वागत है. दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, जब यू नो सब गाने दिल को छू जाए ना, तो टोटल टोटल फील गुड फैक्टर वहीं आ जाता है. म्यूज़िक प्लेज सच अ बिग रोल इन आर लाइव्स. हम इर्द गिर्द इधर उधर म्यूज़िक को अपने रख कर ही चलते हैं, चाहे शादी हो, चाहे सैडनेस हो, ब्रेकअप हो, या फिर लव हो, कुछ सेलिब्रेशन हो. एंड सो वंडरफुल. कभी कभी सोच में मैं भी पड़ जाती हूँ कि सोचिए अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं होती, म्यूजिशियंस नहीं होते, म्यूज़िक नहीं होता. एवरीबडी सेज यूनिवर्स, बट वर्ल्ड चलता रहता है. कितना कुछ ब्यूटिफुल ऑलरेडी हमारे इर्द गिर्द है. ये म्यूज़िक ऑफकोर्स, ऑल द नेचर दैट एवरीबडी टॉक्स अबाउट, बट ये म्यूज़िक नहीं होता. कोई समझ ही नहीं पाता गाना क्या यार, कैसे सुर होते हैं, क्यों बनता है, कैसे बनता है, कुछ बनता ही नहीं, तो नहीं होता ना. सो आंट वी सो ब्लेस्ड, वी हैव सो मच ऑफ म्यूज़िक अराउंड अस. आह, कभी कभी ब्लेसिंग्स में ना थोड़ी सी टॉय आ जाती है, जैसे कि कुछ एक्सीडेंट हो गया. अगर आप कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट में शामिल हो गए, ओ माय गॉड, उसे टॉय कहते हैं. अब सारे ब्लेसिंग्स में जब ये टॉय आ जाते हैं ना, तभी हमारे पास एक और ब्लेसिंग है. दैट इज़ अटर्नी उमर ख्वाजा, हु विल फाइट आवर केस एंड हेल्प अस गेट द कॉम्पेंसेशन दैट वी डिज़र्व. क्योंकि जब हम परेशान हो, डील कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, स्ट्रेस्ड हो, तब हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो हमें उसके अलावा समझे और ये सारी मुश्किलें ना ईजी कर दें. सो अटॉर्नी उमर ख्वाजा इज़ द वन हु विल मेक श्योर यू आर कॉम्पेंसेटेड. और फिर उनका ये दावा है कि वो पेमेंट नहीं लेते जब तक कि आपको पेमेंट ना मिल जाए. यू डू नॉट गेट विन दिस केस एंड गेट द पेमेंट. आप फ्री कंसल्टेशन ले लीजिए, वो भी फ्री है. फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए 4693005046, या विजिट कीजिए अटर्नी उमर .com. वैसे सारे ब्लेसिंग्स में ये गाना भी एक और है ब्लेसिंग, आई वुड से. आई जस्ट लव इट यार.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है. ये वाला बहुत हैवी है. और ये कब पहना था लास्ट टाइम?
4: तो पहनती क्यों नहीं हो?
3: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेशन टाइप.
4: तो रोज वाला ले लो.
5: India's most loved everyday jewelry brand, CaratLane, is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. CaratLane now open next to Tanishq in Frisco.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt. And the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
10: Calculating route. Rerouting.
9: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
10: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
9: क्यों?
10: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
9: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
10: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
11: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
12: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 9455270897, or visit astrologerishwar.com.
13: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call कीजिए कामना को at 214-845-4189. क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
14: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and